भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती, यही तो माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे, यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती, यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्ति की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाती को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है। उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों,
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना हो।

उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

0: भगवान।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते, रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है,

प्रिया जी की जो टहल है, जो सेवा है, ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है। और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। प्रिया जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई। यही मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता। ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है,

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तोहे अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए

दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का यह गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। रघुदास जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। रघुदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो रघुदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे,

अनंत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। देखो भाई, यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है, और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना, यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई, जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी की चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक, तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो, ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ वर्ड हमारे कान में ऐसे आते हैं जो माइंड में स्टक हो जाते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पे तुषार है आपके साथ, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सिस्टर, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है जो बहुत कॉमन शब्द इंटरनेट के जमाने पे हम सुन रहे हैं, हीलिंग। अब हीलिंग का असली मतलब क्या है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो सोशल मीडिया पे इधर उधर चलते रहते हैं, बट रियल और एक्चुअल मीनिंग आज मैं आपसे जानना चाहूंगा।
1: जी, जो मैं समझती हूँ इसमें सबसे पहले ही लगा है, मीन्स आप, उसके बाद ऑल लगा है यानी सारा। तो आप अपने आप को सारा ही बिल्कुल फ्रेश कर सके, हील मीन्स पूरा का पूरा ही अपने आप को अपने ठीक कर लिया है। तो हीलिंग जो शब्द है बहुत ज़्यादा डीप है, जिसमें आपको अपने हायर लेवल को भी हील करना है। हम नॉर्मली समझते हैं कि फिजिकल जो पार्ट है, चलो और डीप हम आज जाने लगे हैं, हम EQ तक पहुंच चुके हैं, इमोशनल क्वेश्चन, जिसमें लोग इमोशंस के बारे में जागरूक हो चुके हैं और इमोशंस को हील करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी और ऊपर जाने की जरूरत है अभी हमारे समाज को, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां हम स्पिरिचुअली अपने आप को हील कर लेते हैं। तो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनली अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको टैकल करने में हम काफ़ी हद तक बहुत सशक्त हो चुके होंगे, एम्पावर्ड हो चुके होंगे। और इसीलिए हीलिंग जो वर्ड है ये बहुत डीप है, इसको सिर्फ हल्के में ना लीजिए।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर, पहले तो ये टॉपिक पे इतनी ब्रीफली हमको यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज्ञान है वो मुझे लगता है आधा अधूरा ज्ञान है, और जो आपने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हीलिंग के बारे में वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ, और जितने लिसनर्स हैं उन्हें बहुत हेल्प करेगा उनकी इस हीलिंग जर्नी में आगे। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो कुछ गानों के बाद, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बाद हम अपने लिसनर्स के सामने रखेंगे, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सोच, तेरा बच्चा कल तुझसे पूछे,
1: पापा पानी कहाँ से आता है?
0: तू क्या बताएगा?
1: कि कभी नल खोल कर छोड़ देते थे,
0: या ये कि हमने वक्त रहते समझ लिया था
1: पानी बचाना मतलब
0: अपने आने वाले कल को बचाना।

0: मेरे ओपिनियन में स्ट्रेस की कोई भी मेडिसिन नहीं हो सकती। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, स्ट्रेस और एक इमोशनल पेन, ये दो टर्म्स हम अब इंटरनेट के जमाने में या गूगल सर्च के जमाने में हम बहुत सुन रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि हमने दवाई दी और स्ट्रेस दूर हो गया, या हमने दवाई दे दी तो हमारा इमोशनल पेन जो है वो दूर हो गया। बट क्या मेडिटेशन वो टूल बन सकता है जो आपके इमोशनल पेन या स्ट्रेस को हील कर सके? क्योंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक मेरे माइंड में आया था।
1: हीलिंग की बात करें तो बिल्कुल मेडिटेशन हमें हील करता है और ये बहुत जो कहें बेस्ट टूल है हमें हील करने का, क्योंकि जब भी बात आती है हम फिजिकली तो योगा कर लेते हैं लेकिन फिजिकली हम फिट होते ही अगर किसी ने कोई बात ऐसी कह दी तो वो हमें फील हो जाती है। अब उस फीलिंग से बचने के लिए अब हमारे को कैसे हम उससे बाहर आए, तो उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट जो है वो टूल है कि हम उस समय पर अपने आप को कुछ ऐसी अफर्मेशन दे कि वो नेगेटिव जो बात मेरे पास आई है, जो मुझे फील हुई है, उसको हम छोड़ सके और अपनी हीलिंग की तरफ जाए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, एक बहन जिसको कैंसर पेशेंट रही है वो, उन्होंने अपने, वो बहुत अच्छी डांसर रही, तो वो जब भी बैठती थी मेडिटेशन में वो ये कहते थे कि मैं अपने कैंसर के जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु है, उसको मैं ऐसे देखती हूँ कि ये असुर हैं और मैं देवी हूँ और मैं इनको मार रही हूँ और ये ख़त्म हो रहे हैं। और सच में ये उसने अपने कैंसर पर जीत पाई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उसके थॉट ने काम किया, लेकिन मेडिसिन भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उसकी जो थॉट थी जो उसने हील के लिए प्रोसेस किया, और वो स्पेशली मेडिटेशन के ही टाइम पर जब वो मेडिटेट करती थी तभी वो अपने आप को ये थॉट देती थी कि मैं जो हूँ वो देवी हूँ और इन जो है जम्स को असुरों की तरह मैं मार रही हूँ। वो उस चीज़ को विजुलाइज करती थी और जैसे जैसे विजुलाइजेशन थी टाइम कम टाइम में उसने अपने आप को हील कर लिया। तो मेडिटेशन तो बेस्ट टूल है।
0: इसका एक एग्जांपल हमने शायद स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, एक लास्ट लीफ करके एक पोइट्री होती थी कि वो एक पेशेंट था, वो बहुत बीमार हॉस्पिटल में था तो उसने होप छोड़ दी थी, तो एक पेंटर ने उसके बेडरूम के सामने वाली दीवार पे एक आर्टिफिशियल पत्ती बना दी थी, लीफ बना दी थी, और ये कहा था कि जब तक ये पत्ती झड़ेगी नहीं तुम नहीं मरो, और वो पत्ती कभी झड़ती नहीं क्योंकि वो पेंट था, तो इसी बहाने वो सरवाइव करके निकल आया।
1: बिल्कुल वही थॉट था जो थॉट ने उसको हील कर दिया।
0: वैसे तो देखिए आपका जो इमोशनल पेन है या आपका जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से कोई चीज रिलीफ नहीं कर सकती है, बट हाँ आपको थोड़े टाइम के लिए उससे दूर मेडिटेशन ले जा सकती है, जो यहाँ पर सिस्टर्स की बात से मेरे को लगा। और अगर हम उसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए मेडिसिन का काम भी करने लग जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.

0: आज मैं एक टिपिकल ह्यूमन इमोशन या ह्यूमन नेचर की बात आपसे करने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ पर। सिस्टर, एक हीलिंग टर्म के साथ मैंने चीज और सुनी है कि इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आके चीजें करने की आदत रखता है। तो हीलिंग के साथ भी सेम प्रोसेस होता है, जब वो बहुत बाल्टी में पानी ऊपर तक भर जाता है इमोशंस का, तब वो सोचता है कि नहीं, अब मैं हीलिंग को अपना लूं। बट तब तक क्या लेट हो चुका होता है? और ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक इंसान की लाइफ में रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए या वन टाइम में काम हो जाता है?
1: आज कोई किसी की सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद ही भरे हुए हैं और हम उनके आगे ही जाके ड्रेन आउट हो रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी फुल हैं उन्हीं चीजों से जिनसे हम भरे हुए हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है पहले अपने लिए एक अच्छा बेस्ट अपना फ्रेंड बन जाए, अपने आप का खुद का दोस्त बने। और दूसरा, हमें सब को, और हम सब भारत में हैं या किसी भी आप जगह पर जाके देखें तो सब जगह पर सबसे पहले गॉड को याद किया जाता है, परमात्मा को। दूसरा हीलिंग सोर्स, हमारी बातें सुनने वाला वो परमात्मा है। हम उन दोनों को छोड़ करके हम लोगों को हम सुना रहे हैं, इसीलिए आज हम शायद हीलिंग हो ही नहीं हो रही है, हमारी हीलिंग हो ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज्यादा, जिसके पास भी जाते हैं वो अपनी सुनाना शुरू कर देता है, हम भी बड़े परेशान हैं, हम भी बड़े दुखी हैं, हम भी ऐसे हैं, तो वो चीज हमें और इरिटेट कर देती है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप से बातें करें, अपने आप को हील करें कि नहीं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, जो भी चीजें हैं मुझे वो सॉर्ट आउट करनी है। अपनी बातों को डायरी पे नोट करें, जो डायरी लिख सकते हैं वो लिखे, नहीं है तो जिसे भी आप अपने आप को इष्ट मानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसके पास जा कर के अपने मन की सारी बातें कर दें, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक सोर्स मिलता है जो कहीं पर आपकी बात को बोलेगा भी नहीं, आपको सोल्यूशन भी उसका कहीं ना कहीं से अरेंज करके देगा। वो भले खुद नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन हमें देता है। और दूसरा, अपने आप के साथ पहले पॉजिटिव हों, हम अपने लिए नेगेटिव हैं, पहले अपने अच्छे दोस्त बने, फिर हमारे से अच्छा हीलिंग और कोई नहीं कर सकता।
0: वो एक कहावत आपने सुनी है कि एक आर्ट भी तब निखर के आती है जब आर्टिस्ट उसकी प्रैक्टिस करता है, तो सेम हीलिंग है। हीलिंग की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे आप एक दिन में हील हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरीकॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरीकॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: रवि याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: अब जो बात होने वाली है ना उसे आप बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं कर सकते हैं, वरना तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया से मैं अब यही जानना चाहूंगा। सिस्टर, आप हीलिंग प्रोसेस में या मेडिटेशन प्रोसेस में एक लंबे समय से हैं, तो क्या वो प्रो टिप्स आप अपनी तरफ से आज हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी उनके हीलिंग जर्नी के लिए या उनकी मेडिटेशन जर्नी के लिए? अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं या वो स्टार्ट कर चुके हैं बट वो कहीं फंस जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं, तो उन्हें क्या ऐसी चीजें अपनानी चाहिए जो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाए?
2: बहुत अच्छा ये स्टेप तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज कहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा हम भाग रहे हैं, तो भाग रहे हैं लेकिन भागते भागते भी जब हम बीमार होंगे तो क्या करेंगे? फिर रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा ना। अगर हमें रुकना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉज देना जरूरी है। और हर एक चीज़ के लिए, जैसे कोई भी बीमारी को हील करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर दो चीज़ देते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा आपकी कोई ना कोई परहेज बताते हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। तो सेम हमारे अगर माइंड को हमें हील करना है और बहुत तेज़ गति से भागना है तो हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। वो अवॉइड क्या करना है? सिर्फ अपने नेगेटिव थाट्स को। और किन चीज़ों को लेके आना है? तो पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव कुछ भी। भागते भागते भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले तो लोग मेडिटेशन को ये सोचते हैं कि हमें शायद कहीं जाके एकांत में बैठना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें भागना पड़ेगा या हमें छोड़ना पड़ेगा या हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ से कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन को कुछ ऐसे थॉट देने हैं जो कि हमें हील कर सके। इस चीज को सभी लिसनर्स

0: में आपको पता है चैलेंजेस आने हैं, तो आपको थॉट सुबह क्या देना है, आज जो भी चैलेंज आएंगे मुझ में भगवान ने इतनी शक्ति भरी है हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ थॉट हम सब अपनी लाइफ में, किसी के सामने एग्जाम है और उसको एग्जाम पास आउट करना है, बच्चा है कोई एग्जाम देने जा रहा है, तो उसको माइंड में सुबह उठ के कि मैं जो भी आज एग्जाम आएगा मेरे को वो सारा आता है, बहुत इजी आएगा, आप मन को थॉट दें। तो ऐसे कुछ थॉट हम दें तो आप देखें अपनी लाइफ को आप कितना स्मूथ बना लेते हैं।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये टिप देने के लिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखने के लिए। और आज ये टॉपिक जो हीलिंग था, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में मिलेगा। बट कल हम एक और नए टॉपिक के साथ सुबह 6 बजे यहीं पर 89.6 रेडियो महारानी पर आपका भी वेट करेंगे कुछ हटके।
2: यह निकाला ना तूने देसी वर का, अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
3: थैंक यू।
4: यस इट्स कंफर्म, हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
5: सर R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में बैंड स्पोर्ट है।
4: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
6: Hey David, आ जा, ऊपर आ।

0: टूर्नामेंट किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देगा। इट्स अ मनी स्पिनर, ये मेरा चैलेंज है।
1: मिस्टर बिगेंसा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे?
0: नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे।
2: A country with billion people and they देखे what 10 world class sportsmen and now by sanctioning RTF you mean to say ये जो सड़कों पे लड़ते हैं वो सीधा international fighters से लड़ेंगे?
3: सड़कों पे गली क्रिकेट खेलने वाले national cricket team में नहीं देखे आपने?
4: Indian sports का हर champion शायद सड़क से उठ कर आया मैम।
5: Ex fighter Mr. Baz Rawat is very strongly for the R2F.
6: I don't agree with Mr. Baz Rawat.
7: हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो।
8: ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी।
9: व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑल अबाउट? फाइट भी तो ब्रेन से लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म।
10: स्ट्रेटजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब लगता है इस गेम में। यू गॉट टू थिंक ऑन योर फीट ओर योर डेड।
11: ए पीटर, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या?
12: अरे जाएगा नहीं, गया।

0: यही बात हो रही है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क?
1: या फॉरगेटिंग मिस्टर देसाई, या अखाड़ों का देश है और एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट होना कमाल की बात है।
0: तो फिर देर किस बात की? यही लाइव हमारे चैनल पर डिक्लेयर करें इंडिया के पहले R2A फाइटर्स के नाम।
1: अरे थोड़ा पेशेंस रखिए, इंडिया का पहला मार्शल आर्ट इवेंट है, एक्शन से पहले सस्पेंस तो होना ही चाहिए।
0: मिस्टर पीटर ब्रिगांडा ऑफिस इज रिफ्यूज टू कंफर्म और डिनाई दिस, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जर्मनी का हेवीवेट चैंपियन द ग्रेट लुका इंडिया आ रहा है। अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया।
2: दैट्स फैंटास्टिक। आई हैव सीन लुका फाइट। ही इज ग्रूसम, ही इज वेरी वेरी डेंजरस।
3: इधर देख।
4: बात खत्म, कंपटीशन तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया।
5: आप ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि द ग्रेट लुका कभी किसी इंडियन फाइटर से नहीं टकरा। कांटे की टक्कर होगी साहब।

रेडियो महारानी

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है आपके। आई नो हाल चाल बहुत ही बेहतर होने वाले हैं आज के दिन, बिकॉज हम लोग आ गए हैं वीकेंड में, और जब वीकेंड में आते हैं ना तो बस कुछ नहीं नजर आता, एनर्जी वैसे ही डबल हो जाती है, बिकॉज वीकेंड ना हमें ये बताने के लिए आता है कि बहुत काम कर लिया, फाइनली अब टाइम हो गया रेस्ट करने का, अपने लिए टाइम निकालने का, और हाँ जो करना चाहते हो ना वो चीज करने का। तो भाई रेडियो महारानी पर आज चेंज ले आ गई है, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है, एंटरटेनमेंट का डोज भी आपको डबल मिलने वाला है, साथ ही बॉलीवुड का तड़का मिलेगा, इंटरेस्टिंग बातों के साथ मिलने वाली है फिटनेस का फंडा भी। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाले चाय की गर्मा गर्म सिप लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुबह 7 बजे आई हूँ और आपके साथ 11 बजे तक रहने वाली हूँ, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है ना, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हाँ जी, बातें तो बहुत सारी करने वाला है, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि फरीदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है। तो देखिए, आज मौसम बहुत ही सुहाना है, फ्राइडे का दिन है और आज का मौसम रेनी और स्टॉर्मी मूड के साथ नजर आया है। यानी कि आज का जो ये मौसम है ना, ये आपको ये बता रहा है कि गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े हो ही जाए। और देखिए, टेम्परेचर की बात करूँ तो हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाले 32 डिग्री, और इसी के साथ अगर मिनिमम की बात करें 27 डिग्री है। और ना पूरा दिन बारिश के चांसेस हैं, तो अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा। ह्यूमिडिटी भी आपको इसके साथ मिलने वाली है। और अगर मैं विंड स्पीड की बात करूँ तो विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आज आपको हवाएं मिलने वाली हैं। और इसी के साथ अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट अम्ब्रेला जरूर कैरी करके जाइएगा। अगर आपको लगता है ना कि आगे बहुत ज्यादा पानी है तो उस रूट से मत जाइएगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वह थोड़ा सा अपना ख्याल रखेगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। मेनी टाइम्स पेरेंट्स कम्स टू मी एंड मेनी टाइम्स आई एम सीइंग टीनेजर्स, दे आर जस्ट नॉट नो अबाउट द न्यूट्रिशन, दे डू नॉट नो वॉट टू फॉलो वट नॉट टू फॉलो, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट देयर बॉडीज। उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, दे आर इन टू एडोलेसेंस एज, उनकी रिप्रोडक्टिव और सेक्शुअल लाइफ एक्टिव हो रही है, और वो बहुत गलत गलत फैंसी ट्रेंड्स गूगल और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से देख के फॉलो तो करते हैं एंड लैंडेड अप इन टू बिग प्रॉब्लम्स। तो एक बेसिक सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज पेरेंट्स आर मच अवेयर, एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल। तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए, और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू।

हेलो हेलो फरीदाबाद। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को ना अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन कई बार ना जब ये वायरल जैसी चीज़ें आ जाती है ना हमारे आसपास, तो हम ना जाकर भी ना बीमार हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ना आज का मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। आप सभी को पता है कि स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन दिनों, जहाँ पर फीवर और कफ ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग ये है कि इससे ना हमारा हार्ट भी इम्पैक्ट होता है। तो भाई दिल्ली में H1N1 केसेस बढ़ने के बीच ना, तो ये डॉक्टर ने एक एडवाइजरी जारी किया, और इस एडवाइजरी के जारी ना कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है और हो सकती है एक्स्ट्रा हार्ट इन्फ्लेमेशन। तो जितने भी हार्ट डिसीज या फिर हाई बीपी वाले लोग है ना, इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपको कफ है, कोल्ड है, आपको फीवर आ रहा है, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलिएगा, उन्हें बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको हैवी ब्रीदिंग हो रही है और सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और अच्छा स्लीप। आपको जरूरत है अपनी बॉडी को प्रायोरिटी बनाने की, अपने हर एक सिम्टम्स को समझने की, डॉक्टर से मिलने की, और हाँ, टाइम पर उस बीमारी इलाज कराने की। तो इसी के साथ एंजॉय कीजिएगा आज का दिन, और एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

चलिए भाई, फरीदाबाद को मिलकर बनाते हैं फिट फरीदाबाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान है ना आजकल, और शायद डिप्रेशन में भी। लेकिन आपको पता है, टाइम ना सब कुछ हील कर देता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब तक टाइम कुछ हील नहीं करता, तब तक आप अपने आप से कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। और कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में 100% फ्रूट जूस और स्मूदीज इंक्लूड करनी है। फिर देखेगा 4 हफ्तों के बाद आपकी डिप्रेशन के सिम्टम में ना थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहती है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक स्टडी में जूस या स्मूदीज लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन वाला जोन है ना, वो हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जूसेस से फ्रेश लेना है, वो पैक्ड जूस नहीं लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% आपको शुगर मिलती है। इस तरह के जूसेस से जो है आपको दूर रहना है। आपको फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स लेना है, साथ ही आप इनके साथ इसका फाइबर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो अगली बार जब भी आपका मूड लो होना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास जूस पी लीजिएगा। क्या पता है ये मैजिकल ड्रिंक आप पर इंस्टेंट काम कर जाए। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, और हाँ, अपने आप को ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी, तो 9 to 5 से बोर हो गए हो ना और कमाना चाहते हो ना एक्स्ट्रा पैसा, अब कैसे कमाएं? तो भाई देखिए, आज का बिजनेस मंत्रा मैं लेकर आऊंगी और आज का बिजनेस मंत्रा में ना कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ बच्चों के बर्थडे प्लान करने। लेकिन ये बच्चे ना ह्यूमन बेबी नहीं है भाई, ये बच्चे हैं अपने फर बेबी। अब आपको ये तो बताओ है ना कि पेट पेरेंट आजकल अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो आज का एक फ्रेश बिजनेस आइडिया मैं लेकर आऊंगी, पेट सेलिब्रेशन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो आप, जहां पर आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि पेट बर्थडेज हो गए, अडॉप्शन एनिवर्सरी हो गई, या फिर स्मॉल गेट टुगेदर हो गया, जहाँ पर आपको एक डेकोरेशन थीम रखनी है, पेट फ्रेंडली केक्स रखने हैं, फोटो शूट कराना है और साथ ही ना कस्टमाइज रिटर्न गिफ्ट्स भी देने हैं जितने भी फर बेबीज आने वाले हैं। तो देखिए भाई, बिजनेस एकदम ऑसम है और ये बिजनेस ना चलने भी वाला है, बिकॉज जो आजकल के पेट पेरेंट है ना, वो अपने खुद के बच्चों से ज्यादा ना अपने पेट से प्यार करते हैं। सो आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या नाम देना है। बिजनेस आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अगर चल जाता है ना तो मुझे आके जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, तो बनी रही 89.6 FM के साथ।

0: सोच, तेरा बच्चा कल तुझसे पूछे,
1: पापा पानी कहाँ से आता है?
0: तू क्या बताएगा?
1: कि कभी नल खोल कर छोड़ देते थे,
0: या ये कि हमने वक्त रहते समझ लिया था
1: पानी बचाना मतलब
0: अपने आने वाले कल को बचाना।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल, फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर।

जिंदगी में बहुत सारे बोनसेस के बारे में सुना, लेकिन कभी बेबी बोनस के बारे में सुना था? नहीं सुना ना, तो चलिए फिर सुनाते हैं आज आपको। फटाफट से चलते हैं फरीदाबाद से निकल के सिंगापुर। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ना अब लोगों के लिए बेबी बोनस लेकर आ गई। बिकॉज अगर मैं बात करूँ इस देश की, तो भाई यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ का जो बर्थ रेट है, वो बहुत ज्यादा लो हो गया है। और ये सुनने के बाद ना यहाँ की गवर्नमेंट आ गई स्ट्रेस में कि अगर जनता ही नहीं रहेगी तो देश कैसे रहेगा। अब अपने देश को बचाने के लिए ना वहाँ की फैमिलीज को अप्रोच किया है कि अगर आप बेबी प्लान करते हो तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको 52 लाख रुपए तक का सपोर्ट करेगी, जिसके अंदर बच्चे के बर्थ से लेकर 17 साल की एज तक डिफरेंट बेनिफिट्स एंड सपोर्ट के फॉर्म भी दिए जाएंगे। तो देखिए इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। जो फैमिलीज ये सोच रही थी ना कि बेबी प्लान गिरने के बाद बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर, फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो भाई देखिए अब आपका खर्चा उठाने वाली है आपकी सरकार, तो भाई देरी किस बात की, अभी बेबी प्लान गिर लीजिए। और यार अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा लो हो जाएगा ना देश में, वो बात नहीं रहेगी, देश के जो लोकल लोग है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए ना सरकार ने इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा उठाया है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की, ये सारे एक्सपेंसेस भी कवर होने वाले हैं। तो भाई देखिए इस कंट्री का ना सिंपल सा मैसेज है, बेबी आपका सपोर्ट हमारा। तो भाई जितने भी लोग अभी बेबी प्लान करने से डर रहे थे ना, आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। और इसी के साथ ही बहुत सारी बातें लेकर आऊंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में ना।

आज ने गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है। शादी के मंडप से तो खुद को भगा, हाँ भगा। क्यों बोल रही हूँ आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना। कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए हैं। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान के कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वाले को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है। तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए बॉक्सिंग

तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सनमा का कैप्सूल।

कहाँ है वो लोग जो छोटी लड़कियों को देखकर सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई ये तो किसी पोकेमोन से कम नहीं है, कहाँ है वो जिराफ जैसे लोग। बिकॉज उन लोगों के लिए ना आज मैं इतनी बढ़िया इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ ना, जिसे सुनने के बाद ना भाई साहब आपको आपके लंबे होने पर अफसोस होगा। और आज मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है ये स्टडी बताते हुए, क्योंकि यार अभी तक ना आपने सिर्फ मेरी आवाज सुनी है। जिस दिन आप मुझे देखेंगे ना तो आपको शायद यही लगेगा कि मैं अभी भी ना 11th 12th क्लास की एक बच्ची हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है। और कम हाइट होने का मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई कमी है, नहीं। तो भाई देखिए, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जो नहीं करते है ना यार, अपने आप से प्यार करो। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज हैं जो मुझे सुन रही है, जरा से वॉल्यूम तेज कर लो, क्योंकि यार इंटरनेट पर ना इन दिनों आपके फेवर में इंटरेस्टिंग क्लेम वायरल हो रहा है। और पता है क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जितनी भी शॉर्ट गर्ल है टॉल गर्ल के कंपैरिजन में स्वीटर स्मार्टर और ज्यादा केयरिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है ही नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि इस छोटे से पैकेट में ना बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी केयर है और बहुत सारा फन भी है। सो जितने भी अभी तक बड़े लोग ये अपनी हाइट पर इठाते थे ना यार, किसी काम की नहीं है आपकी हाइट, क्योंकि अगर आपको किसी से बचना होता है ना तो आपकी हाइट इतनी बड़ी है कहीं छुप नहीं सकते आप लोग। लेकिन हम जो छोटे हाइट वाले लोग है ना यार, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो आज की स्टडी मुझ जैसे

छोटे लोगों के लिए थी, यानी कि जो हाइट में छोटे हैं। सो जितनी भी शॉर्ट गर्लीज आज मुझे सुन रही थी ना, फाइनली ये स्टडी हम लोगों के लिए आ गई है, तो अब फ्लेक्स करना तो बनता है ना। तो आपके जितने भी लंबू फ्रेंड्स है ना, बस आज वाली स्टोरी ना इन्हें सुना दीजिएगा और इन्हें बताइएगा कि बेटा आपकी जो लंबी हाइट है ना सिर्फ दिखाने के लिए ही है, इसका काम कुछ नहीं है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलते हैं कुछ ही देर में।

0: हां जी, और बताइए क्या हाल चाल है। देखिए हाल चाल आपका बेहतर है आई नो, और ये सुनने के बाद ना और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि आज ना मैं एक गुड न्यूज के साथ आई, और गुड न्यूज ना सीधा पहाड़ों से आई है, खासकर हमारे हिमाचल से। तो देखिए भाई, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, वो अब 99.55% लिटरेसी रेट के साथ देश का सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट बन गया है, और सिर्फ गोवा की अगर मैं बात करूं 99.7% उससे आगे है। ये अचीवमेंट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी ULLAS के थ्रू मिली है, जो कि स्पेशली नॉन लिटरेट को बेसिक एजुकेशन और फंक्शनल लिटरेसी देने पर फोकस करता है। अगर मैं बात करूँ ना हिमाचल की, तो हिमाचल अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। हिमाचल ने सोचा है और एक टारगेट सेट किया है कि 2026 से 27 में 100% लिटरेसी लेकर आएगा। तो देखा पहाड़ों से कितनी सारी कहानियां आती है, और अब पहाड़ों से ना ये स्ट्रॉन्ग एजुकेशन स्टोरी बाहर आई है। 99.55% अचीव, बस 0.45% रह गया है, और ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होकर 100% हो जाएगा। तो देखा थी ना आज की ये बेहतर स्टोरी, और ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज मैं लेकर आती रहूंगी। लेकिन अभी वक्त हो गया है शानदार सा ट्रैक सुनने का, मिलते हैं ना कुछ ही देर में।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हाँ जी, अगर आपको लगता था ना कि 80s सिर्फ मम्मी पापा वाली एल्बम में ही बचा है, तो भाई आजकल ना जाकर इंस्टाग्राम खोलो। इंस्टाग्राम पर ना हर कोई आपको 80s में पहुंचा हुआ मिला हुआ है, और सोशल मीडिया पर ना चैट जीपीटी का 80s फोटो ट्रेंड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और आपको पता है लोग ये ट्रेंड कर भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, और इन फोटोज को ना अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर करना कुछ नहीं है, चैट जीपीटी के पास जाना है, उसे अपनी एक नॉर्मल फोटो देनी है और एक प्रॉम्प्ट देना है कि चैट जीपीटी मुझे 1980s के एरा में पहुंचा दो, और ये बताओ कि मैं कैसी दिखती हूँ 1980s के एरा में। सो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और जब आप रिजल्ट देखेंगे ना भाई, रिजल्ट बहुत ही एपिक है। फ्लोई बिग हेयर स्टाइल्स, रेट्रो साड़ीज, पोल ज्वेलरी, और साथ ही विंटेज बॉलीवुड सॉन्ग्स, अमेजिंग। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे काम तो बहुत ही बढ़िया किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पलक झपकते ही ना आप टाइम मशीन में बैठ गए और उस एरा में पहुंच कर जो अपने आप में ही बेहतरीन है। देखिए, अगर अभी तक आपने ट्रेंड नहीं फॉलो किया है ना, तो जाकर यार फॉलो कर लो। हर चीज अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज ना लाजवाब होती है, और ये इस बार के 80s के ट्रेंड ने दिखा दिया है। तो अभी जो आइए इस ट्रेंड में खो जाइए, और बताइएगा कि आपकी फोटोज आपको कैसी लगी, और बताने के लिए बताए ना कहाँ जाना है, फटाफट से आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपनी पिक्चर्स हमें भेज भी सकते हैं। सो एंजॉय कीजिए ट्रैक कुछ ही देर में।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू डॉक्टर.

हाँ जी, बहुत दिनों से सोच रहे हैं ना कि कहीं बाहर जाया जाए, खासकर इस फरीदाबाद से बाहर जाया जाए, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया ना यहाँ पर रहते हुए। तो चलिए फिर आपको थाईलैंड घुमा कर लाती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं ना एक इंटरनेशनल ट्रिप हो जाए, तो थाईलैंड कर रहे हैं ना आपका इंतजार। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखना है, बिकॉज 15 सितंबर से इंडिया ट्रेवलर्स थाईलैंड में अप टू 30 डेज वीजा फ्री एंट्री कर सकेंगे। और बस इस एंट्री के लिए आपको करना क्या है, आपके पास आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग रेडी होनी चाहिए, और साथ ही इमिग्रेशन के लिए 20,000 थाई बात होने चाहिए। दैट्स इट, इतना काफी है आपको एक थाईलैंड की परफेक्ट ट्रिप के लिए। सो अगर जाने का प्लान कर रहे हैं ना, खुशखबरी आपके लिए है, अभी से बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। और ये जो हॉलीडेज है ना, इन हॉलीडेज को एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज भाई वीजा फ्री हॉलीडे है तो और क्या ही चाहिए। और इसके साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है कुछ ही देर में।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

हेलो हेलो जी फरीदाबाद। तो फाइनली मैं आ गई हूँ इतने एक्साइटमेंट के साथ, बिकॉज अब टाइम हो गया दिमाग की बत्ती जलाने का। और दिमाग की बत्ती जलाने का सबसे बढ़िया तरीका है फरीदाबाद की पहेली। तो देखिए, आज की जो मैं पहेली लेकर आई हूँ ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले पहेली जान ही लेते हैं। नाम मेरा एक जानवर से मिलता है, पर जंगल में मेरा कोई ठिकाना नहीं। फरीदाबाद में मेरी पहचान पुरानी, बताओ मैं हूँ कौन। चलिए एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ शॉपिंग भी होती है और शाम भी सुहानी होती है। अब बताइए शाम शानदार करने का प्लेस कौन सा, यानी कि ऐसा कौन सा वो प्लेस है जहाँ आप जाके शॉपिंग भी करते हो और एंजॉय भी करते हो उस प्लेस को। तो आपको बताया ना बताने के लिए कहाँ जाने, तो फटाफट से आ जाइए अपने जवाब लेकर। मैं मिलती हूँ ना आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर देखती हूँ किसका मैसेज मुझे पहले आता है। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

का एक छोटा सा प्लांट और कल के सांसों के लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट, यही कहा जाता है प्लांट्स के लिए और यही माना भी जाता है। अगर आज आप एक प्लांट लगाएंगे ना, तो कल आपकी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा। सो देखिए, यही इनिशिएटिव लेकर हम आ गए हैं, यानी कि रेडियो महारानी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। सो ये एक तरह की प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ पर हमारे साथ स्कूल कॉलेजेस आसपास के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये ड्राइव पूरे 10 दिन रहने वाली है, यानी कि 10 दिन हम हर जगह को हरा भरा करने वाले हैं। हम अपने पास से प्लांट्स लेकर जाएंगे, स्कूल्स में लगाने वाले हैं, कॉलेजेस में लगाने वाले हैं। और यहाँ सिर्फ हम इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं होंगे, हम ये मौका आपको भी दे रहे हैं, आप भी बन सकते हैं ऑक्सीजन मास्टर। यानी कि अब आप आ सकते हैं रेडियो महारानी के ऑफिस, हम यहाँ पर आपको एक प्लांट देंगे और बस वो प्लांट आपको अपने एरिया में लगाना है। सो ये ड्राइव सिर्फ हमारी नहीं है, ये ड्राइव आप सबकी है। और इस ड्राइव में सिर्फ हम या आप नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि प्लांट लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करना चाहिए, और साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। सो इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। तो फरीदाबाद रेडी हो प्लांट टुडे ब्रीच टमोरो के लिए, और 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और बनिए ऑक्सीजन मास्टर। और इसी के साथ ही ना, एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

हाँ जी, फरीदाबाद वालों, बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो और इस लेजी बन को दूर करने के लिए ना, इस आलस को दूर करने के लिए ना, आज मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। और आज का फिटनेस वाला फंडा हमारे फरीदाबाद को बनाने वाला है फिट फरीदाबाद। हाँ जी, फिटनेस वाले फंडे की बात कर रही थी। और अगर आप भी सोच रहे हैं ना कि चलो सुबह हो ही गई है, अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दिया ही जाए, तो देखिए भाई, फरीदाबाद लेकर आ गया आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि फरीदाबाद में 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड में होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026। और आपको पता है खास बात क्या है, अगर अभी तक मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर भी करा लिया खुद को। तो भाई देखिए, जो हमारा फरीदाबाद है वो तो इस रेस में निकल पड़ा है, अब बारी आपकी है। अगर मैं रेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको 21.1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक का रन मिलेगा। यानी कि मैराथन अब हर किसी के लिए होने वाली है, फिर चाहे आप बिगनर है या फिर है आप एक प्रोफेशनल रनर, हर कोई इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दौड़ना ही नहीं है, अगर दौड़ते दौड़ते आप जीत भी गए ना, तो पता है आपको 21.1 किलोमीटर की ओवरऑल जितने भी विनर्स है ना, उनको मिलेगा 1,00,000 रुपए का प्राइज। तो भाई देखिए, फिटनेस भी होने वाली है, बैलेंस भी बढ़ने वाला है, तो और क्या ही चाहिए। और अगर मैं इस मैराथन की बात करूँ ना, तो ये सिर्फ एक रेस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज हमें बताता है हेल्दी लाइफस्टाइल और नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं कराया खुद को, तो अभी जाइए, खुद को रजिस्टर कराइए। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा फरीदाबाद हाफ मैराथन .in पर। यहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और इस मैराथन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अभी जाइए, रजिस्टर कराइए खुद को और फिर मिलते हैं ना 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तरफ अक्षय कुमार दूसरी तरफ सैफ और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बज बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

हाँ जी, बातें तो बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारी मेरे पास जवाब भी आए, और जवाब आए फरीदाबाद की पहेली के। तो देखिए, टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए मैं ये आपको ये बता देती हूँ कि जो सही जवाब दिया है वो है श्वेता ने। अब लगता है श्वेता है शॉपिंग पगलू, क्योंकि श्वेता ने बताया अंजलि जो पहेली तुमने पूछी है ना उसका जवाब है यार क्राउन इंटीरियर्स मॉल। तो श्वेता बात बिल्कुल सही की है, इसी मॉल की मैं बात करी थी और इसी मॉल तक आप भी पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है आप शॉपिंग पगलू बहुत ज्यादा हो, ये हमें पता चल रहा है। और इसी के साथ मैं बस यही कहूंगी, ऐसे ही फरीदाबाद को प्यार देते रहिए, फरीदाबाद को एक्सप्लोर करते रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: Hi, I'm Dr. Tanu. I'm a MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. Pehli inning mein menarche, pregnancy, bacche, single life, married life, so many things. And now you are in a very, very different fragile phase of your life where aapki body mein jitni sari cheezon se aap khoobsurat lagte the, aap itna actively kaam karte the, ab wo sari cheezein kam hoti chali jayengi. Ab bahut zaruri hai ki hum 5 cheezon pe dhyan dein. Pehli cheez, ho sakta hai ki aap pehle sleep ko importance nahi dete the, but take a good magnesium supplement and try to sleep better. Second, protein. एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें. अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर. थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती. यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज करनी है. फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है. ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो. इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद राइट पीपल. पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. That is going to impact because अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपका बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी. ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पाँच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. थैंक यू.
1: Doctor calling.

हाँ जी, बातें बहुत सारी कर ली आज, तो चलिए अंजलि ऑन एयर का ये सफरना यहीं पे खत्म कर देते हैं, आज के लिए खत्म करते हैं, बिकॉज वीकेंड में आ गया ना। अब मैं आपसे मिलूंगी मंडे सेम टाइम सेम प्लेस, बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आपके साथ। सुबह सुबह ट्रैफिक से लेकर वेदर सबकी अपडेट आपको देती हूँ, और आज भी दी थी बॉलीवुड से लेकर फरीदाबाद की अपडेट्स आप तक पहुँचाती हूँ। तो भाई फ्राइडे को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, वीकेंड में आ गए हैं, अपने फैमिली के साथ अपने लव्ड वंस के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। और देखिए जब वीकेंड आते हैं ना तो ना सारी टेंशन साइड हो जाती है, फिर संडे तक ना बस फ्री होकर हम लोग रिलैक्स होकर हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये दो दिन ना जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, बस यही वाले स्पिरिट अपने साथ रखिएगा, इस वीकेंड को अच्छे से डेडिकेट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा खूब। मिलेंगे मंडे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एवरी ड्रीम एवरी मीन्स एवरी ड्रीम इज वैलिड। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये कोड की पहली लाइन पढ़ते हुए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली लाइन ही है एवरी ड्रीम इज वैलिड, एवरी वॉइस मैटर, एवरी स्टेप फॉरवर्ड क्रिएट अ पाथ फॉर अदर फॉलोअर्स। मतलब आप पीछे की पूरी कहानी समझ रहे, पीछे का पूरा मतलब समझ रहे हैं कि वो हर ड्रीम जो एक वुमन ने देखा है वो वैलिड है, उसे पूरा करना चाहिए। हर उठाई हुई आवाज किसी भी अन्याय के खिलाफ मैटर करती है, मायने रखती है, और वो उठाया हुआ पहला कदम जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोग उस पाथ पे चलने वाले हैं जहां चलने से पहले 10 बार वो आज से पहले सोच रहे थे। हर एक वो चीज मैटर करती है, और वो पहला कदम उठाने वाली लेडीज ही इतिहास रच देती हैं। अक्सर हमने सुना है कल्पना चावला और मैरी कॉम, बहुत सारी ऐसी लेडीज की हम मिसाल देते हैं कि उन्होंने वो पहला कदम उठाया तो शायद आज वुमेन इस फील्ड में यहां तक पहुंच पाई हैं। क्रिकेट में भी अगर किसी वुमेन ने पहला कदम वो ना उठाया होता तो शायद आज वुमेन्स क्रिकेट टीम इतना अच्छा नहीं कर रही होती। तो वो पहला कदम इस इंपॉर्टेंट, उसके बाद फॉलोअर्स तो अपने आप बन ही जाते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सा ब्रेक है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

0: अगर इन पे स्पॉटलाइट नहीं पड़ी तो ये स्पॉटलाइट का बनना बेकार है भैया, क्योंकि इन्होंने जो काम करा है वो शायद हम 21 साल की उम्र में तो नहीं सोच रहे थे। रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये 21 साल की महिला भी क्या कहूंगा, 21 साल की लड़की जिसने ये कमाल करके दिखा दिया है। इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी, वहां से इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल की तरफ आया। वहां पर बड़े बड़े लीडर्स थे, इनको कहानी सुनने मिली नीम करौली बाबा के ऊपर, तो इन्होंने इंडिया आके सोचा इन पे एक मूवी बनाएंगे, और 2 करोड़ रुपए लगा के वो मूवी बनाई है जो आज 150 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है, मतलब 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। हनुमान अंश मूवी का नाम है और लड़की का नाम है अनुप्रिया नागर, और ये बिहाइंड द सीन से अप फ्रंट स्क्रीन इसलिए आ रही है जब ये पॉडकास्ट दे रही है, जब ये इंटरव्यूज दे रही है, तो ये उस टाइम के मिरेकल्स बता रही है। तो ये बता रही है कि जब ये फॉरेन में रहते थे और वहां बाबा को लोग कितना बिलीव कर रहे हैं, और इंडियन शायद उतना नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, बट इस मूवी ने उनके माइंडसेट, उनकी बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, और मिरेकल हैपेंस। ये मूवी टोटली वो लोग कह रहे हैं मिरेकल है, क्योंकि शुरू में ये 300 स्क्रीन पे आई, 300 स्क्रीन पे ना सक्सेस होने की वजह से 23 स्क्रीन बची थी, और उस 23 स्क्रीन से लगभग 5000 स्क्रीन तक वापस आना, स्क्रीन बढ़ना, ये यूजुअली किसी मूवी के साथ नहीं होता, बट इस मूवी के साथ हुआ है। अब ये चमत्कार समझिए या मूवी की शक्ति समझिए या फैंस का प्यार समझिए, आप जो समझना चाहते हैं समझिए, पर मूवी ने अपना सक्सेस रेट दिखा दिया है, और इतना दिखा दिया है कि अब सीजन 2 इनको बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।
1: फिर आ गए सब राज्य खुश है।

0: पीआर है इस खातर तेरे तक करे प्यार को न्या और सारी दुनिया में जागी टोली है तने जाट वर्गा मिलेगा यार को न्या और मैडम है दिन में शिफ्टा रात ने स्टूडियो में गावे मैंने तेरा जैसा देखा स्टार को न्या तेरा जैसा देखा स्टार को न्या
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। या किडनी केयर मंत्र की मैं बात करूं तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रखें, मोटापे से बच के रहें, वजन को कंट्रोल रखें और अननेसेसरी पेन किलर नहीं रहे, क्योंकि किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ पेन किलर है। तो इन चीजों का ख्याल रख के हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू। Thank you.

जो नारी है ना वही असली शक्ति का रूप भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक शक्ति का सही एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। मधुरा कर इंडिया की एक न्यू पावर लिफ्टिंग स्टार बनती जा रही है। 17 साल की उम्र में 4 गोल्ड मेडल जीतना IPF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इंडियन पावर लिफ्टिंग जो पूरी चैंपियनशिप है वहां पर ये जीत के आई है। जूनियर कैटेगरी में 52 kg इनका वेट है और इन्होंने जो लिफ्ट किया है वो लिफ्ट किया है 292.5 kg, मतलब अपने वेट से लगभग 3 गुना और ज्यादा इन्होंने वेट जो है वो लिफ्ट करके ये मेडल्स जो हैं वो अपने नाम करे हैं। स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ऑल ओवर सब कुछ वहां पर इन्होंने करके दिखाया और जिस हिसाब से इन्होंने डोमिनेट किया उस स्टेडियम को, तो ये 100% वर्ल्ड चेंजिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए शी चेंज द वर्ल्ड में आज हमने इनको लिया है। स्मॉल बॉडी, मैसिव स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिशन सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, चैंपियन का माइंड सेट लेके इन्होंने वहां पर वो पूरी तरह से स्टेडियम में इंडिया इंडिया के जो नारे होते हैं, जो इंडिया इंडिया का जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, उसको जगा दिया था। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरीकॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरीकॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: क्या है भैया ये 80s का ट्रेंड? ऐसा क्या आया कि ये पार्टीज जो हमारे इंडिया की हैं वो आपस में लड़ने लगे? भाई आपको हमने बनाया था लीड करने के लिए, आप ऐसा कैसा लीड कर रहे हो, आपस में ही लड़े जा रहे हो कि ये देखो 80s के टाइम पे ये पार्टी ऐसा करती थी, 80s के टाइम पे ये पार्टी ऐसा करती थी, आपस में मीम बना बना के लड़ रहे हैं। भाई आप बनाओगे तो जो बाकी जनता है वो तो बनाएगी बनाएगी ना, उनको तो हम रोक ही नहीं सकते, उनका तो पूरा हक है जब जो उनके लीडर्स हैं वही ऐसी चीजें बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। और भाई पिछले 3 दिन से 4 दिन से मेरा पूरा सोशल मीडिया इसी चीज से भरा हुआ है, सिर्फ एक चीज, 80s की फोटोज। मुझे लगता है 80s में इतने लोग रियलिटी में नहीं थे जितने अब पहुंच चुके हैं, उनमें मैं भी हूं। हालांकि मैंने भी कौन सी कम बनाई है, मैंने भी बनाई दी थी 15, 20, 16, पता नहीं कितनी बनाई थी, पर 15 से तो ऊपर का ही आंकड़ा होगा जो मैंने भी क्रिएट करी है। तो अब जब सब कुछ फ्लो में चल रहा होता है तो उसी फ्लो के साथ आप भी चलना पसंद करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही चलता है जो ट्रेंडिंग होता है, और ट्रेंड से आप हटे तो आप सोशल मीडिया से बाहर हटे, ये भी एक रियलिटी फैक्ट वाली चीज है। इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका हिस्सा बन रही है, उन्हें भी मालूम है ट्रेंड फॉलो नहीं करा यूथ को हमने नहीं करा तो ये जेन जी हमको सपोर्ट नहीं करेगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।
1: सुनो, अरे सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघो का ओ धोंडी बा आई का ओ आई का, ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने। कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं, आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा। हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए। इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ। नहीं, जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए। हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सोच, तेरा बच्चा कल तुझसे पूछे,
1: पापा पानी कहाँ से आता है?
0: तू क्या बताएगा?
1: कि कभी नल खोल कर छोड़ देते थे,
0: या ये कि हमने वक्त रहते समझ लिया था
1: पानी बचाना मतलब
0: अपने आने वाले कल को बचाना।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

लाइफ में तुमने क्या किया अगर अभी तक तुम एक ऑक्सीजन मास्टर नहीं बने। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, बट अभी भी चांस तुमने मिस नहीं किया है। रेडियो महारानी अभी भी तुम्हें चांस दे रहा है ऑक्सीजन मास्टर बनने का। अब ये कैसे बन सकते हैं, क्या होना है, मैं आपको बताता हूँ। रेडियो महारानी ने लॉन्च किया था 1 सितंबर को प्रोजेक्ट ऑक्सीजन, जहां पर हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप ऑक्सीजन मास्टर बनना चाहते हैं तो बस हमको हमारे इंस्टाग्राम पे आके डीएम करिए, जो रेडियो महारानी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, कि मैं बनना चाहता हूँ ऑक्सीजन मास्टर, और हम आपको बुलाएंगे और एक प्लांट जो है वो प्यारा सा आपको गिफ्ट करेंगे, जो प्लांट आपको अपने घर ले जाके उसे लगाना है और उसके बाद उसकी सेल्फी खींच के हमको शेयर करनी है। और इसी तरह आपके कोई नोन हो उन्हें भी ऑक्सीजन मास्टर बनने का सजेशन दीजिए, और ऐसे ही प्लांट लगा लगा के हम बनेंगे ऑक्सीजन मास्टर। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर calling.

फरीदाबाद वालों प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? अरे बहुत कम दिन बचे हैं और उस दिन वो जो बड़ा सा अमाउंट है वो आप ही को जीतना है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ और मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद हाफ मैराथन की, जहाँ पर रन जो है वो होने वाली है 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की फन रन भी होने वाली है। और ये कहाँ होने वाली है? सूरज कुंड मेला ग्राउंड पे। और 27 तारीख जो है वो आपने अपने कैलेंडर पे ऐसे सर्कल बना के रख लेनी है और सुबह सुबह पहुंच जाना है इस रन के लिए। बट उससे पहले काम आपको और करना है, अपना रजिस्ट्रेशन रन के लिए कराना। और रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको जाना है www.faridabadhalfmarathon.in, इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। और ये जो रन है इसके पीछे का जो कॉज है, जो मोटिव है, वो बहुत अच्छा है, हेल्दी हरियाणा और प्लस नशा मुक्त हरियाणा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियंट इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

यार आज ना एक गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है, शादी के मंडप से तो खुद को भगा। हाँ भगा, क्यों बोल रही हो आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना। बेस्ट ऑफ अंजलि। कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान के कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वालों को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है। तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। मेनी टाइम्स पेरेंट्स कम्स टू मी एंड मेनी टाइम्स आई एम सीइंग टीनेजर्स, दे आर जस्ट नॉट know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: इस सोसाइटी में ना नारी बहुत सारे रोल जो है वो प्ले कर दिए, कभी एक वर्किंग वुमेन का, कभी एक टीचर का, कभी किसी के रोल मॉडल बनने का। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और एक ऐसी ही नारी आज मेरे साथ है जो हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं, जो ऑथर भी हैं, जो टीचर भी हैं, और वर्किंग वुमेन तो ऑब्वियस सी बातें हैं ही, प्लस अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं। प्राची भारद्वाज आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। प्राची, पहले तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, एज अ टीचर जर्नी आप कैसे आए, या कोई और फ्यूचर में कोई लड़की अगर इस टीचिंग जर्नी में आना चाह रही है तो उसे अगर आप गाइड करना चाहें।
1: ओके, सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार टू ऑल माय ऑडियंस एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू टू रेडियो महारानी मुझे आज बुलाने के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग कि आप एक वर्किंग वुमन है, एंड मैं सारी गर्ल्स को जो भी आज मुझे रेडियो महारानी के प्लेटफॉर्म के थ्रू सुन रही हैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वर्क हार्ड, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई फील कि एक ब्लेसिंग है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और उसके साथ एक टीचर हूँ। तो चैलेंजेस तो सर हर जगह है, नो डाउट, लाइफ विदाउट चैलेंजेस आई थिंक किसी के भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक एग्जांपल को लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी लाइफ में चैलेंजेस हो। तो बीइंग अ टीचर कुछ चैलेंजेस जो होते हैं, सबसे पहला कि बहुत टायर्सम जॉब है, आपको हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ रहना है, ठीक है। आप टायर्ड हो, आप परेशान हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप जब क्लास में एंटर करेंगे, आप जब क्लास में पढ़ाएंगे, तो यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड आपके फेस पे वो स्माइल होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके। और चैलेंजेस तो मैं यही कहूँगी कि यही है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि हमें बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। वो अगेन कहीं आपको उनकी मदर बनना पड़ रहा है, कहीं आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ता है, कभी आपको उनका एक आई वुड से काउंसलर बनना पड़ रहा है। तो ये आप एक टीचर होने के साथ साथ बहुत अलग रोल्स भी प्ले करेंगे, तो ये भी एक चैलेंज है कभी कभी कि आप एक सिर्फ टीचर नहीं है, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, रादर आप उनकी मामा भी बन रहे हैं, कभी आप उनके लिए फ्रेंड भी बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो आई वुड से चैलेंज, बट कहीं ना कहीं आई फील इट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में आपको फिट होना आता है। सो दिस इज आई वुड से फ्यू चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि एक टीचर को होंगे।
0: अब एक टीचर यहाँ पर है और उससे हम ये डिजिटल चेंज के बारे में नहीं जानेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो थोड़ी देर बाद हम लौट के वापस आते हैं और प्राची से ये डिजिटल दुनिया के चेंजेस के बारे में या डिजिटल दुनिया में चेंजेस आने की वजह से जो हमारे हर्डल्स आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात ये भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सनम का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: तो हमारी जो आज की गेस्ट हैं ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये एक ऑथर भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और प्राची, आप टीचर के साथ साथ एक ऑथर भी हैं, लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये लिखने का शौक कहाँ से आ गया?
1: ओके सर, सो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो पब्लिश हुई, एंड दैट इज अनबॉदर्ड। तो ये एक शिफ्ट था जो कि मेरे को लगा कि अब मैंने टेंसेस बहुत पढ़ा लिए हैं, जिससे बच्चों की मैंने टेंसेस बहुत सिखा दिए, बट अब मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो एक्चुअल में उनकी लाइफ रिफ्रेम कर सके। सो मैंने बुक लिखी अनबॉदर्ड, और जैसे कि टाइटल ही खुद कह रहा है कि यू हैव टू लीव ऑल द नेगेटिव एनर्जी, तो ये नो डाउट बच्चों के लिए, बट आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन देयर टीन्स एंड फॉर पीपल लाइक अस दोज हु आर इन देयर थर्टीज। ये बुक ये थी जब मैंने देखा कि आजकल बच्चा बहुत परेशान है उन कमेंट्स से जो कि उनके फ्रेंड्स उनको पास ऑन कर रहे हैं, हम एज अ वर्कर्स परेशान हैं उन कमेंट्स से जो कि एक्चुअल में कोई यूज के नहीं है। तो अनबॉदर्ड इज अ बुक जो कि आपको ये बताता है कि लाइफ में बहुत लोग कमेंट करेंगे, बट आपको कैसे अनबॉदर्ड रहना है, आपको अपनी लाइफ पे कैसे फोकस करना है, दिस इज समथिंग जो मैंने इस बुक में लिखा। तो ये एक नो डाउट शिफ्ट था रेड पेन से एक राइटिंग पेन के टुवर्ड्स जो मैंने किया, एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस जो कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखूं। एंड ये सब टॉपिक्स मुझे बच्चों से ही आए कि जो मैं उनको देख रही हूँ आजकल वो पीयर प्रेशर में है, आजकल वो डिप्रेशन में है, वो आजकल अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। एंड नॉट ओनली बच्चे, अगर मैं बात करूँ हमारी एज अ यंग जनरेशन, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, हम लोग कंपैरिजन में है, हम लोग उन सारे चीज़ों से बाउंडेड है जो कि एक्चुअल में किसी भी वर्थ की नहीं है, बट वो हम लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को मैटर कर रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अनबॉदर्ड, एंड अब वो सारे ही आपके अमेजोन एंड आपके सारे यू कैन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। सो यस, दिस वॉज अ शिफ्ट, एंड नो डाउट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लासरूम्स का उसी ने मुझे मोटिवेट किया, क्लासरूम एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड रादर से, कि जिसने मुझे मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए। एंड या द बुक इज डूइंग गुड,
0: ऑल द वेरी बेस्ट आपकी ये बुक के लिए जो अभी आई है। आई होप बहुत सारे लोग उसे रीड करें, बहुत सारे लोग इस पे रिव्यू दें, बहुत सारे लोग इस पे फीडबैक दें, और आप आगे ऐसे भी और बुक्स जो हैं वो लिखती रहें। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन्हें एक टीचर की लाइफ से रिलेटेड, एक स्कूल की लाइफ से रिलेटेड फिर से वो सारा रिकैप देने के लिए। एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: फ्राइडे है मतलब वीकेंड का ट्रेलर तो आ ही गया है ना, अब बस एंटरटेनमेंट का फुल वर्जन बाकी है। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं फिल्म में फ्लेवर, जहाँ अगले दो घंटे मूवीज, ओटीटी ट्रेलर, सॉन्ग्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया की वो सारी बातें होंगी जो आपके वीकेंड मूड को और इंटरेस्टिंग बना दें। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और अपने मूड को सेट कर लीजिए और मेरे साथ रेडी हो जाइए एक फुल ऑन फिल्मी राइड के लिए। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: मिर्जापुर का भोकाल थिएटर्स में तो चल ही रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि घर बैठे बैठे इसको देखने का मजा कब मिलेगा। मिर्जापुर द मूवी की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा तेज है और इस फिल्म का डिजिटल पार्टनर अमेज़न प्राइम वीडियो है, यानी बड़े पर्दे के बाद ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। हालांकि ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में इसकी स्ट्रीमिंग की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब अगर आप सोच रहे थे कि थिएटर छोड़कर अब सोफे पे बैठकर गुड्डू भैया और मिर्जापुर का पूरा भौकाल देखेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली। फिलहाल थिएटर्स में इस फिल्म का जलवा जारी है और ओटीटी पर इसे देखने के लिए हमें बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का। गाने के बाद फिर लौटूंगी इसी जगह। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।
3: दामी उंगर।
4: उंके?
3: उंगर।
4: उंके?
3: दामी उंतुक।

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

भाभी पर शक करना तो सुना था, लेकिन भाभी डायन निकलेगी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। यामी गौतम एक बार फिर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं अपनी अपकमिंग फिल्म नई नवेली में। और हाल ही में इसका टीजर आया है और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से, जहां यामी बनी है मोहिनी यानी कि घर की बहू। लेकिन ये कहानी तब पलटती है जब इनके जीजा जी बोल देते हैं कि भाभी डायन है। और बस फिर क्या, हॉरर के साथ कॉमेडी का ऐसा तड़का मिलता है कि टीजर देखकर आपको स्त्री और मुंजिया की थोड़ी याद जरूर आएगी। लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग लग रही है और इस फिल्म को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट किया है बालाजी मोहन ने। और ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 16 अक्टूबर को। तो इस बार फेस्टिवल में मिठाई के साथ साथ थोड़ा हॉरर कॉमेडी का तड़का भी तैयार है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वासियों, रनिंग शूज रेडी है क्या? क्योंकि अब सिर्फ रन नहीं, एक पूरा फिटनेस मोमेंट आने वाला है। 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स में होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन, और इसमें अब तक 1,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और इसमें आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का टाइम्ड रन है और 5 किलोमीटर की फन रन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विनर्स के लिए रखी गई है लगभग 10,00,000 रुपए की प्राइज मनी, और इसमें हिस्सा लेने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं फरीदाबाद हाफ मैराथन .in पर जाके। तो अगर रनिंग आपका पैशन है या बस आपको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपके लिए एक साइन है, इसे इग्नोर मत करिए प्लीज। तो चलिए 27 सितंबर को मिलते हैं सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स में। तब तक के लिए ये गाना एंजॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

यार आज ना एक गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है, शादी के मंडप से तो खुद को भगा। हाँ भगा, क्यों बोल रही हूँ आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना। बेस्ट ऑफ अंजलि। कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाते हैं, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान के कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वालों को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है। तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: कोई तुझको कान पे हो सके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर with Bollywood never stops,
5: with Bollywood never stops,
6: picture perfect music loaded।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: छठ पूजा को तो हमने हर साल अपने आसपास देखा ही है, लेकिन इस बार ना बॉलीवुड इसे बड़े पर्दे पर लेकर आ रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन मूवी में छठ पूजा की ग्रैंड सेलिब्रेशन को एक नेवर सीन बिफोर सिनेमेटिक अवतार में दिखाया जा रहा है। और अब इसका छठी मैया सॉन्ग भी रिलीज हो गया है, जो इसी फेस्टिव वाइब की झलक देता है। और सबसे खास बात यह है कि बॉलीवुड पहली बार छठ पूजा की इस खूबसूरत ट्रेडिशन और बिहार के इस कल्चर को बड़े पर्दे पर शोकेस करने जा रहा है। और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 25 सितंबर को थिएटर्स में। तो इस बार छठ की आस्था, ट्रेडिशन और बॉलीवुड का तड़का तीनों एक साथ देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: जब जुल्म हद बार कर जाए तो कोई ना कोई उसके खिलाफ खड़ा होता ही है, और इस बार उस अंदाज में नजर आ रहे हैं विजय देवरकोंडा अपनी अपकमिंग फिल्म रणवली में। फिल्म का पहला टीजर सामने आ चुका है और कहानी सेट है 19th सेंचुरी ब्रिटिश रूल के दौर में, जहां एक्सप्लॉयटेशन, सूखा और आम लोगों की परेशानी के बीच विजय का किरदार रणबली अंग्रेजों के लिए एक सेवेज लेकिन अपने लोगों के लिए हीरो जैसी वाइब देता है, और उनके साथ रश्मिका मंधाना उनकी पत्नी जयामा के किरदार में नजर आएंगी। और खास बात यह है इस मूवी की कि विजय और रश्मिका की शादी के बाद ये उनकी पहली फिल्म रिलीज होगी, तो एक्साइटमेंट डबल होना तो बनता ही है ना। और ये मूवी थिएटर्स में आपको देखने को मिलेगी 16 अक्टूबर को, यानी कि दशहरा वाले दिन पर। मतलब इस दशहरा एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ बड़े पर्दे पर पूरा एक्शन का भौकाल। चलिए अब वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल, फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, फ्राइडे आते ही ना वीकेंड का मूड अपने आप ऑन हो जाता है, और अगर फ्राइडे को नई फिल्में और सीरीज भी मिल जाएं, तो फिर वीकेंड की प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है। आज यानी कि 11th of September को थिएटर्स और OTT पर एंटरटेनमेंट का अच्छा खासा डोज मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हैवान की, जहां अक्षय कुमार और सैफ अली की जोड़ी सालों बाद साथ नजर आएगी। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये क्राइम थ्रिलर आज थिएटर में रिलीज होगी। OTT पर स्टोलन हार्टबीट्स नेटफ्लिक्स पर आएगी, जो सुपर नेचुरल सर्वाइवल थ्रिलर है। वहीं दूसरी तरफ गो टीम एक स्पैनिश डार्क कॉमेडी है, जिसमें एम्प्लॉयज की एक अनयूजुअल सिचुएशन के बीच कहानी आगे बढ़ती है। और थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी हनुमान अंश, जो डिवोशनल ड्रामा और पहले से ही अपनी सक्सेस को लेकर चर्चा में है। मतलब आज का आपका दिन बोरिंग बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने वाली है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब वक्त हो चुका है इस शो को शटर डाउन करने का। उम्मीद है इन दो घंटों में आपको काम से थोड़ा ब्रेक मिल गया होगा और आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ। लेकिन जाने से पहले ये गाना एंजॉय कीजिए। मैं हूँ पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा था फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: चलना ओ सनम।
1: यार आज ना एक गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है, शादी के मंडप से तो खुद को भगा। हाँ भगा, क्यों बोल रहे हो आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना। बेस्ट ऑफ अंजलि। ये लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान के कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वाले को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है। तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: हाल कैसा है जनाब का,
5: क्या ख्याल है आपका,
4: तुम तो मचल गए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो
1: ना,

किस लिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

तुम्हारे

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: अब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: शाम होते ही आलस आए ना आए, मगर एक है जो रोज आता है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव आप सभी के साथ आ गया है अगले चार घंटों के लिए, यानी कि 5 से 9। सोमवार से शुक्रवार खूब सारी बातें होती है, मस्ती होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्योंकि देखो उमस जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं पूरा तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए, और फॉर्मल्स पता नहीं क्यों मुझे सूट ही नहीं करते हैं। मैं पहन लूँ फॉर्मल्स तो उस दिन पूरा पसीने में भीग जाता हूँ। खैर, मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ फॉर्मल्स पहने हुए, तो मैं उनको देख कर भी खुद पसीने हो जाता हूँ। और उसके अलावा देखो गर्मी अभी है, बट सुबह और शाम की ठंडक बनी हुई है। मतलब ठंडक वैसी वाली सर्दी वाली नहीं, बट स्टिल मौसम अच्छा है, और अभी धीरे धीरे धीरे धीरे ये गर्मी भी खत्म हो जाएगी। और उसी के साथ साथ गणेश चतुर्थी की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है मार्केट में। गणेश जी के आइडल्स मिल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अभी ग्रीन आइडल्स बनाइए, मतलब ग्रीन मूर्ति बनाइए, आप लोग घर पे खुद से बनाइए, क्ले से बनाइए। और उसी के साथ साथ DIY किट्स भी आ रही हैं मार्केट में, तो आप लोग खुद से करके देखिए, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। एंड मार्केट में वो फेस्टिव वाली वाइब तो चालू हो ही चुकी है, और मुझे ना यही मंथ्स अच्छे लगते हैं, ये वाले मंथ्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चारों महीने अब बिल्कुल फेस्टिवल वाली वाइब रहेगी। खर्चे बढ़ जाएंगे तो जो लोग बिजनेस मैन है वो लोग भी बहुत अच्छा कमाएंगे। ई शॉपिंग इस साल बहुत ज़्यादा ऊंची जाने वाली है, ई शॉपिंग मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग इस साल बहुत ऊंची जाने वाली है। सब चीज़ों के बारे में करेंगे बात। और अगर इसी बीच आप लोगों को मुझसे फरीदाबाद से रिलेटेड कोई भी बातें करनी है तो नंबर है मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर इमरान हाशमी की मूवी से ये गाना।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: आप ऑनलाइन एक वीडियो डालो, नहीं चलेगी। आप ऑनलाइन फिर से मेहनत करके एक बहुत अच्छी वीडियो बनाओ, नहीं चलेगी। और अगर आप एक फेक वीडियो डाल दो, खूब चल जाएगी। रेडियो का गौरव, आरजे
1: गौरव। आप लोग भी सोच रहे होंगे आरजे गौरव तो ये क्या बातें कर रही है, क्या बात करता है। मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत बहुत सारी गलत गलत वीडियोस बनाई जा रही है, और वो कोई और विदेशी नहीं बना रहा है, इंडिया में बैठा ही एक कॉन्टेंट क्रिएटर है जिसने हाल ही में AI सीखा है और उसने ऐसे ही एक वीडियो बनाई और फिर उसके बाद वो चल गई तो उसने वही वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, और इसमें इंडिया को सिर्फ और सिर्फ गंदा दिखाया जा रहा है। यानी कि ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे स्ट्रीट फूड है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, वो पानी नाले में से भर रहा है और फिर उसके बाद वो अपने हाथ से मसाला क्रश कर रहा है। मतलब बहुत गंदगी दिखाई गई है उस वीडियो में, और एक आदमी अपने पसीना पोंछ रहा है कुलचे में और फिर उसके बाद कुलचे को गर्म करके खिलाने के लिए दे दे रहा है। ऐसी टाइप की AI वीडियोज़ बनाए जा रहा है ऑनलाइन, और मुझे लगता है इस इंसान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, अकेले को, जितने भी लोग वीडियोस देखते सब लोग उसको ये बोलते हैं भाई AI का गलत इस्तेमाल मत कर। बट इसी बीच एक अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर है, उनका नाम है क्रिस्टन, ये लड़की खुद से इंस्टाग्राम पे आई, इन्होंने ये सारी की सारी वीडियोस कंबाइन करी और बोला इंडिया ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ इन वीडियोस पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। और इस सब के बावजूद भी इस लड़के को शर्म नहीं आई है, आज भी ऐसी ही वीडियोस बना रहा है जिसमें इंडिया को डिफेम किया जा रहा है। तो क्रिस्टन ने सिंपल बोला है कि ये सब बकवास है, भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और किसी ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने के लिए ये सब वीडियोस बनाए हैं। बट क्रिस्टन को खुद को नहीं पता कि वीडियोस सारी की सारी एक इंडियन ने बनाई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या इलाज किया जाए ऐसे लोगों का, गुस्सा आता है ऐसी चीज़ों को देखने के बाद। चलिए खैर, हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे। वैसे ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, ये वाला गाना रेडियो महारानी पर।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अंकल जी, कैसे हैं? अंकल जी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंकल जी आपने वादा किया था कि आप जॉगिंग शुरू कर दोगे। क्या हुआ उस वादे का?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। अब दौड़ने का वक्त आ चुका है। नहीं नहीं, अभी से नहीं दौड़ना है, तैयारी कीजिए इसकी। और फरीदाबाद हाफ मैराथन होने जा रही है फॉर ड्रग फ्री हरियाणा। और ये ना, इसमें टोटल प्राइज मनी है 10 लाख रुपए की। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। रेडियो महारानी इज योर ऑफिशियल पार्टनर। एंड इसी के साथ साथ एक और बात आप सभी को बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद की पहल है फरीदाबाद हाफ मैराथन, और फ्लैग ऑफ होगा बाय आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी द्वारा, और ये होने जा रही है 27 सितंबर को। 5 किलोमीटर की फन रन है, 10 किलोमीटर की टाइम रन है, 21.1 किलोमीटर की टाइम रन है। अब इन तीनों में से आपकी जो मर्जी है उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, आप पीछे मत हटिए। और निशुल्क है सबसे बड़ी चीज़, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा की एक पहल है, और देखते हैं कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल नंबर्स अभी आ जाएंगे कुछ दिन में, और 27 तारीख को ये रन होने जा रही है। अभी बहुत दिन है आपके पास, अभी पूरे पूरे 17 दिन है, और इतने दिनों में आप रनिंग करना शुरू भी करेंगे तो 5 किलोमीटर वाला तो इजीली क्रॉस कर लेंगे। बट मैं बोलूँगा आप लोगों को कि 10 किलोमीटर की ट्राई ज़रूर करना, मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसी के साथ साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलूँगा, और हरियाणा को नशा मुक्त हम सब मिलकर बना के रहेंगे एक दिन। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते। सिंपल सा है, www.faridabadhalfmarathon.in, बस इस पे जाइए और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे। शो चल रहा है 4896, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

ये गाना जब आया था ना उस टाइम ट्रेंड था, मतलब उस टाइम वो ट्रेंड वाला वर्ड तो नहीं था, बट हाँ ये गाना ट्रेंड जरूर बन चुका था, हर शादी में डीजे पे बजता था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। याद करो एक बार अपने बचपन के दिन, जब पहली बार मैंने शादी में डीजे देखा था तो उस पे मैंने सबसे पहले सुखबीर बाजी की आवाज में ये गाना जरूर सुना था। डांस भी किया था खूब ज्यादा। फिर उसके बाद MTV पे देखते थे टीवी पे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे ये चीज बदलती चली गई। एंड ट्रेंड अब वो होता है जो इंस्टाग्राम पे चलता है। इंस्टाग्राम पे 80s वाला ट्रेंड चल रहा है। अपनी फोटो अभी तक करी नहीं करी आप लोगों ने? मैंने तो कर ली। 80s वाला ट्रेंड, शो मी एज इफ आई वॉज बॉर्न इन 1980s। भाई रेट्रो वाला लुक जो दे रहा है ना हमारी फोटोज को ChatGPT, अमेजिंग है। खैर इसके अलावा एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में जिसको देखने के बाद DMRC को खुद से सामने आना पड़ा और बोलना पड़ा कि देखो लाला ऐसे मत करो, लाला मत कर, लाला मत कर। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, अपना फ़ोन ले रहे हैं, फ़ोन के पीछे ना वो स्टिकॉन वाला एक कवर आ रहा है आजकल नया, उससे आप अपना फ़ोन ना शीशे पे चिपका सकते हैं। तो लोग दिल्ली मेट्रो के शीशे पे चिपका रहे हैं और फिर उसके साथ साथ भागते हुए वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली में वीडियो ऐसे बन रहा है कि फोन तो उन्होंने चिपकाया, फोन चिपकाने की वीडियो बना दी, फिर एक इंसान अंदर से वीडियो बनाता है। मगर यहाँ पर फोन चिपका भी अगर रहे हैं आप तो इसमें भी दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये हो सकता है कि मोबाइल आपका खराब हो सकता है, मोबाइल आपका वहाँ से विंडो से नीचे गिर सकता है, और जब आप साइड साइड में भाग रहे हैं मेट्रो के तो आप किसी और से टकरा सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो दिल्ली मेट्रो ने वार्न कर दिया है सभी लोगों को कि अगर आप लोग ऐसे करते हुए दिख गए, पकड़े गए, तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगला स्टेशन फरीदाबाद है, कृपया यहाँ पर रील ना बनाए। देखो रील बनाओ बिल्कुल बनाओ, बट जोक से पार्ट, आप लोग अपनी सेफ्टी रखिए और साथ ही साथ आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे प्यारे प्यारे गाने बजते रहेंगे। मेरे दोस्त मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

सीजन ऑफिशियली चालू हो गया है, मानो या मत मानो, क्योंकि देखो आसमान में भी वो खुशबू है सौंधी सौंधी सी, और उसी के साथ साथ अब ऑनलाइन भी शॉपिंग में बहुत सारे डिस्काउंट्स आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में तो हम सबको पता है द ग्रेट इंडियन सेल नाम की बहुत सारी सेल शुरू हो जाएगी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है जी सभी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। एंड त्योहारों में इस बार ई कॉमर्स बाजार पूरी तरह से चमकने वाला है, और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार 1.55 लाख करोड़ की सेल्स का अनुमान है। 1.55 लाख करोड़, सोचिए इतना बड़ा नंबर है, कितने जीरो आएंगे इसके बाद पता नहीं चल रहा। और ऐसे ही माना जा रहा है कि इस बार ऑनलाइन फेस्टिव जो जितनी बिक्री होगी वो 25 से 29% तक बढ़ सकती है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। और इसमें सबसे बड़ा मेन हिस्सा किसका होगा, सोचो जरा, हम सबके हाथ पे है वो डिवाइस। अभी गाड़ी चला रहे तो हाथ पे नहीं होगा, और अगर अभी हाथ पे है तो साइड में रख दीजिए उसे, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन की हिस्सेदारी टॉप रहने वाली है, ऑलमोस्ट 30% के अराउंड रहने वाली है, और क्विक कॉमर्स से भी 24,000 करोड़ की बिक्री हो सकती है इस फेस्टिव सीजन। और देखो पिछले साल भी फेस्टिव सीजन में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, और इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। तो इस बार 25 से 29% बढ़ने वाला है क्विक कॉमर्स बिजनेस और साथ ही साथ ई कॉमर्स बिजनेस, और त्यौहार के सीजन के लिए सारी कंपनियों ने खास तैयारियाँ कर ली है। तो कब से है त्यौहार, अगले महीने से ही आपको द ग्रेट इंडियन सेल ऐसे करके बहुत सारे डेज मिल जाएंगे आपको। तो मैं बताऊं आप लोगों को एक ट्रिक, जो पहली वाली सेल आएगी ना उसी में खरीद लेना जो खरीदना चाहते हो, क्योंकि सेकंड वाली सेल में उतने अच्छे डील मिलते नहीं है। और अभी से ही विश लिस्ट करके रख दो जो भी आपको खरीदना है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गाने सुनिए, क्योंकि जगह पूरे दिन भर की जो टेंशन है ना उसको भी तो निकाल

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे
1: माझी चाशनी तू माझी खास मी तुझा समर्थक उद्या पण आज भी बोले लो किस्मती बोले आज नहीं।

0: वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। क्या आपको सपना आया जिसमें आप भगवान से मिले हो सपने के अंदर, या फिर आप किसी मंदिर में गए हो, तो उसका क्या मतलब हो सकता है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो, ऐसा काफी बार होता है कि हम लोग सपने में भगवान को देख लेते हैं, या फिर हो सकता है हम लोग सपने में अपने मून की मूर्ति देखते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपके सारे रुके हुए काम जल्दी से पूरे होने वाले हैं, आपके जो जितना भी स्ट्रेस था ना, वो सब का सब खत्म होने वाला है, सुकून मिलने वाला है आपको और सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपको भगवान की मूर्ति दिखाई दी है तो घर में खुशी आने वाली है और गुड लक का एक प्रतीक है। और अगर आपको मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, जैसे काफ़ी बार होता है ना, हम लोग किसी जगह पे जाना चाहते हैं, सपोज आप केदारनाथ जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे, आपको सपने में केदारनाथ आप पहुंच चुके हैं, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो और जल्दी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और अगर आपको किसी ने कुछ दिया है, भगवान ने कुछ दिया है सपने में, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। इसका मतलब है पैसा और सक्सेस बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब लाइफ में होती है ना, तो फिर काफ़ी बार पॉजिटिवनेस आ जाती है ना। तो ऐसे सपने देखा कीजिए। देखो, सपनों पर किसी का कंट्रोल होता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों अगर पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सपने ही आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम जो दिन में सोचते हैं वही चीज़ हमारे रात में सपने में भी आती है। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ वापस आकर, और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

काफी बार मेरे मन में एक सवाल आता है, और वो सवाल ये आता है कि टीम इंडिया क्रिकेट की जो भी है, वेंस की या फिर वुमेन्स की, तो दोनों जगह पर इनको स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और दूसरी कंट्रीज़ को जब मैं देखता हूँ तो वहाँ के क्रिकेटर्स को इतना पूछा भी नहीं जाता, कोई पूछता भी नहीं है कि क्या खेल रहे, क्रिकेट ही तो खेल रहे। आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड क्रिकेट की अभी मैंने बात करी है तो आप सभी को बता दूं, टीम इंडिया का जो

कोड है ना BCCI, इसके बारे में तो हम सभी ने सुना है। सबसे ज़्यादा महंगा वाला बोर्ड है BCCI और सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाता है BCCI। टॉप 10 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में सबसे पहले नंबर पर आता है BCCI। 18,760 करोड़ की एस्टिमेटेड नेटवर्थ है BCCI की। सोचो इतना ज़्यादा पैसा, तभी तो इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। एंड इसके साथ साथ सेकेंड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आधे से भी आधा, 674 करोड़ नेटवर्थ। फिर उसके बाद इंग्लैंड 503 करोड़। मैं ये सारी बात रुपीज में कर रहा हूँ। और इंग्लैंड के बाद ना एक ऐसी कंट्री आती है जिसका आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और वो है PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान की नेटवर्थ है 469 करोड़ रुपीज। और फिर उसके बाद आती है बांग्लादेश की बारी, 435 करोड़। पता मुझे ना एक चीज़ लगती है कि ना जो एशियन कंट्रीज है ना, इसमें क्रिकेट कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। और फिर उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, 401 करोड़। जिम्बाब्वे 324 करोड़, जहां जिम्बाब्वे किसी टाइम पे कोई पूछता भी नहीं था, बीच में कुछ साल पहले की बात है। और उससे पहले वाली जो जिम्बाब्वे की टीम थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। खैर वापस आते हैं मुद्दे पे, टॉप 10 रिचेस्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब बारी आती है अगली, 171 करोड़ नेटवर्थ के साथ श्रीलंका। श्रीलंका के बाद 128 करोड़ वेस्ट इंडीज। और फिर उसके बाद इनसे बहुत कम मगर बहुत स्ट्रांग टीम न्यूजीलैंड, 77 करोड़ नेटवर्थ के साथ। तो ये है कुछ टीम्स जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, किससे? क्रिकेट से। और अभी तो बाकी स्पोर्ट्स बाकी हैं, बचे हैं। तो चलिए, आप लोगों को क्या लगता था कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा कमाती है? ऑब्वियसली बात है, इंडिया ही कमाती होगी, ये तो पता ही था सबको। नहीं पता था क्या आपको? पता चल गया ना अभी। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग बातें करता रहूंगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारी कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लड़की थी
4: आशा इस पंजाब।

0: चाबी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

आज है 10 तारीख यानी कि 10 सितंबर, मगर एक सवाल मैं पूछूंगा, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था? बोलोगे छुट्टी थी, छुट्टी तो थी, मगर इस दिन विजय और उसकी फैमिली, विजय कौन? विजय सलगांवकर यार, आपको नहीं पता विजय सलगांवकर कौन है? दृश्यम की मैं बात कर रहा हूँ। विजय और उसकी फैमिली कहाँ गई थी? पणजी गई थी, वहाँ का गुरुजी के सत्संग में। गुरुजी के सत्संग के बाद उन्होंने पाव भाजी खाई थी। तो ये मीम्स ऑल ओवर इंटरनेट अभी फैल चुके हैं, क्योंकि आज से ठीक 22 दिन बाद रिलीज होने जा रही है दृश्यम पार्ट 3। अब देखो, दृश्यम पार्ट 3 अगर किसी ने ऑलरेडी देखनी है तो वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजन में। बट अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो हिंदी में जो मजा है ना वो अलग ही है। अब देखो, आप कितनी ही इंग्लिश बोल लो, इंग्लिश में गुस्सा दिखा लो, मगर जो हिंदी में गुस्सा दिखाने का मजा है वो तो कुछ और ही होता है ना। तो ऐसे ही सेम टू सेम दृश्यम पार्ट 3 आने वाली है 2 अक्टूबर 2026 को, और 22 दिन कितनी जल्दी बीत जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और इसी के साथ साथ एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी से कि दृश्यम 3 के मीम्स ऑल ओवर इंटरनेट अभी फैले हुए हैं। गाय टोंडे अभी घूम रहा है इधर से उधर, क्योंकि गाय टोंडे को विजय नाम पसंद ही नहीं है, तो ऐसे ही डिलीवरी वाली चीज़ें भी दिखा रहे हैं।

तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखो मैं तो एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, और अगर आप लोगों को पता नहीं है पार्ट टू में क्या हुआ ना, तो एक बार फिर से जाके देख लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है पार्ट टू भी, और पार्ट थ्री में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना फरीदाबाद के लड़के की आवाज में लाडो, मैं हूँ गौरव।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

क्या आप लोग अपनी जॉब से खुश हैं? क्योंकि काफी सारे लोग बस पैसों के लिए जॉब कर रहे हैं, नहीं तो उनका तो मन कहीं और ही लगा रहता है। उनका मन होता है कि नहीं, मैं अपना बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव जी, सभी के साथ कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आपके? खुश हो कि नहीं हो, ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि आजकल कौन सा इंसान खुश है? और जो इंसान खुश है उसको दूसरे इंसान खुश रहने कहाँ दे रहे हैं? ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया तो खैर छोड़ो। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते, बहुत सारे लोग। नहीं, मैं तो हूँ। मोस्ट अनहैप्पी जॉब्स के बारे में मैं सोच रहा था, उसमें सबसे पहले नंबर पर आया कॉल सेंटर। एंड आई वॉज लाइक, हाँ वो लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग इतने उम्मीद से कॉल करते हैं कि हमें इंसेंटिव मिल जाएगा। फिर उसके बाद सामने वाला इंसान बोलता है, अरे मैडम जी पागल हो गए हो क्या, आप लोग क्यों कॉल कर रहे हो? और ये मेरे सामने देखी हुई बात है, क्यों ऐसे बात करनी कॉल सेंटर वालों से, उनका भी तो अपनी जॉब है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, कैशियर की जॉब। मुझे लगता है कैशियर की जॉब ना, जो एक बैंक कैशियर है वो डिफरेंट है, बट जो रेस्टोरेंट्स में या फिर मैं बोलूँ सुपरमार्केट में जो कैशियर होता है, उनकी जॉब बड़ी डिफिकल्ट टाइप की होती है। हाथ आया मुँह ना लगा, पैसा बहुत सारा आता है, लगता मुँह पे नहीं है। उसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स की जॉब भी मोस्ट अनहैप्पी जॉब्स में आती है। सोचो, किलोमीटर पे किलोमीटर गिनते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे रूट पे वो ट्रैवल करते हैं, और कितने ज़्यादा थक जाते होंगे। इसके बाद आती है बात डिलीवरी बॉयज की, जिनके साथ शोषण तो होता ही रहता है, क्योंकि उनको लिफ्ट में अलाउड नहीं है जाना। फरीदाबाद में भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो लिफ्ट में अलाउ नहीं करती है डिलीवरी बॉयज़ को। तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें जनाब, ना करें। और अभी फ़िलहाल एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि देखो, एक और जॉब है, वो जॉब ऐसी है जो नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जिसे कहते हैं नर्स। वो लोग भी अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें डांट देते हैं, पेशेंट के साथ में जो भी होते हैं पेशेंट के साथ, वो भी डांट देते हैं। और फिर बात आती है टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स भले ही खुशी खुशी अपना काम करें, मगर वहाँ पर प्रिंसिपल भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तो साथ ही साथ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है टीचर्स से। तो ये थी कुछ मोस्ट अनहैप्पी जॉब्स ऑफ इंडिया। तो आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा ज़रूर। नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज हैं, कनिका मान हैं, पंचायत वाले आसिफ खान हैं और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि क्या हुआ बारिश का। तू तो कह रहा था बारिश आ जाएगी थर्सडे की शाम से। हो सकता है कहीं छींटे पड़ रहे हो सकता है अभी मैं स्टूडियो के बाहर जाऊं तो शायद मुझे थोड़े बहुत छींटे देखने को मिल जाए। वैसे कोई उम्मीद है कि नहीं आपको लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि देखो मौसम विभाग का कहना था कि थर्सडे की शाम को हल्के फुल्के बादल आ जाएंगे, फिर फ्राइडे को दोपहर तक बारिश देखने को मिल जाएगी, फिर सैटरडे को भी बारिश देखने को मिल जाएगी। बट अब ये सारे चांसेस ख़त्म हो चुके हैं और सारे चांसेस शिफ्ट हो गए हैं अगले हफ्ते के लिए। तो रुकावट के लिए खेद है और आगे बारिश हो सकती है शायद। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव बात कर रहा है इस टाइम मौसम की। और मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि ह्यूमिडिटी 55 बनी पड़ी है, स्पीड हवा में चल नहीं रही है, और साथ ही साथ एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी भी ठीक है, देखो अभी मॉडरेट के आसपास है। और अभी सर्दियां आते आते हवा थोड़ी सी भारी हो जाती है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर थोड़े से और ऐड ऑन हो जाते हैं, तो फिर फॉग प्लस स्मोक मींस स्मॉग वाली स्थिति बन जाती है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। अभी जितनी खुली हवा में सांस लेना है ले लो, मैं बस यही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए ना गाने चलाऊँ। बट गाने से पहले कल की बात कर लेते हैं, मतलब जो कल आने वाला कल है ना, आने वाला कल, जाने वाला है मगर आने वाला कल हो सकता है आप सभी के लिए बारिश लेकर आ जाए। और कल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल तो फ्राइडे है ब्रो, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे की उत्सुकता कितनी ज़्यादा होती है ना, तो फ्राइडे के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा हमें अपने पास। क्या रखना पड़ेगा? छाता, बारिश हो सकती है कल। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं HR 89.6। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई, सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है, और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक। पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

क्या आपके ऑफिस में भी एक ऐसा एम्प्लॉई है जो बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, हमेशा मैनेजर के पीछे पीछे घूमता है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है क्या हाल है। क्या हाल है पूछने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसे इंसान से पूछो, चापलूस इंसान से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा सर आप बताओ आप बढ़िया हो तो मैं भी ऑटोमेटिकली बढ़िया हूँ। बॉस ने बोला गुड मॉर्निंग, वो बोलता है सर आज की मॉर्निंग भी आपकी वजह से गुड है। बॉस की चापलूसी करने में वो एक भी कसर पूरी नहीं छोड़ता। ऑफिस में काम कम करता है वो, बॉस का मूड ज़्यादा ट्रैक करता है, क्योंकि क्या हाल है उससे पूछ लो तो बॉस का जोक भी, उसको फनी हो या ना हो, हमेशा उसकी अप्रेजल की गारंटीड ज़रूर होती है। मतलब बॉस के जोक की गारंटी नहीं है बट उसके अप्रेजल की गारंटी ज़रूर है। और हाँ, सर ने बस नया हेयर कट करवाया है और फिर उसके बाद वो पहुंच जाता है, सर पर्सनैलिटी अपग्रेड हो गई आपकी। ऐसी चीज़ें जाके बोलता है। अच्छा, बॉस के सामने उसकी वोकैबुलरी में भी ना नो शब्द नहीं होता, वो हर चीज़ में यस सर, जी सर, हो जाएगा सर, हर चीज़ में ऐसे ही बोलता है। और एक और चीज़, अगर किसी दिन बॉस लेट आए तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर आप लेट आए, वो बोलेगा सर आप लेट नहीं आए, ऑफिस जल्दी खुल गया था। और उसका काम ठीक हो या ना हो, बॉस की इंस्टाग्राम स्टोरी पे पहला रिएक्शन उसका ही होता है, क्योंकि बॉस ने बोला वीकेंड पे थोड़ा काम है, वो बोलता है सर वीकेंड भी तो आपका ही है, हम तो आपके ही हैं, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, कौन करेगा। और हाँ, एक और चीज़, वो बोलता है हमेशा कि सब बढ़िया है, सर आप खुश हो तो एम्प्लॉई खुश है, एम्प्लॉई खुश हो तो फिर क्या खुश है, अप्रेजल खुश होता है और कुछ खुश नहीं होता। तो ऐसे चापलूस एम्प्लॉई आपके भी ऑफिस में होंगे जो सर के आके पीछे पीछे घूमते रहते होंगे, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सारी बातें। याद नहीं हुई तो हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, नंबर है जी 9654896896। क्या क्या बातें मैंने बोली वो मैं सब आपको लिख के भेज दूंगा। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना एड शीरन की आवाज़ में सफायर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स।

0: क्या आपको पता है बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो दूसरी इंडस्ट्री से पिक किए जाते हैं, कभी साउथ इंडियन इंडस्ट्री से तो कभी बॉलीवुड से तो कभी हॉलीवुड से, बॉलीवुड नहीं बॉलीवुड पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से भी पिक करते हैं।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव आप सभी के साथ। 1990 में एक बहुत ही बढ़िया पंजाबी ट्रैक आया था अमरिक सिंह शेरा की आवाज में, याद होगा आप सभी को, तेन काड़ा चश्मा जचदाए तोरे मुखड़े ते, और ये 1990s में आया था। बट उसके बाद फिल्म बार बार देखो मैं साल 2017 में ये ले लिया गया था काला चश्मा। इसके अलावा नवाबजादे एक मूवी आई थी उसमें गुरु रंधावा का गाना हाई रेटेड गबरू, ये गाना भी ले लिया गया था। और 90s का एक और ट्रैक है जो बहुत ज़्यादा वायरल था अपने टाइम पे, हर शादी ब्याह में एक गाना ज़रूर बजता था, वो था ओ दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए, याद है ना ये गाना? हाँ, तो ये गाना लिया गया था फिर उसके बाद सोनू की रीडू की सीढ़ी वाली मूवी में, और हंसराज हंस की आवाज़ में ये गाना था, मगर अडेप्ट किसने किया? यो हनी सिंह और ओ तेनू सूट सूट करदा, ये भी तो गुरु रंधावा का था गाना, बट गुरु रंधावा की ही आवाज़ में हिंदी में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था और हिंदी मीडियम मूवी में भी लिया गया था इसको। और इसके अलावा मुंडिया तो बच के रही ओ तेनू होनी होनी होई मुटियार, ये गाना याद है ना आप लोगों को? ये गाना भी रिक्रिएट किया गया था हिंदी में बागी 2 मूवी के लिए। तो देखो ऐसे ही ना रोज़ रोज़ आके आप लोगों का ज्ञान बढ़ाता जाता हूँ। आई नो UPSC के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब ऐसी चीज़ें भी याद रखनी चाहिए क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमारे पास भी है ना म्यूज़िक डिकोड करने की, तो वही म्यूज़िक को डिकोड किया है आज और अभी कल भी करता रहूँगा। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ गुरु रंधावा की आवाज़ में, मिक्स मैशअप उन्हीं के दो गाने अजूर और सिरा।

0: capacitatem.
1: रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है। वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाई, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एम डी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड यस, आई ऑल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माई एडवाइस टूडे कम्स फॉर वुमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स, एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ, वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

क्या आप लोग अपनी जॉब से खुश हैं? क्योंकि काफी सारे लोग बस पैसों के लिए जॉब कर रहे हैं, नहीं तो उनका तो मन कहीं और ही लगा रहता है। उनका मन होता है कि नहीं, मैं अपना बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव जी सभी के साथ, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आपके? खुश हो कि नहीं हो, ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि आजकल कौन सा इंसान खुश है? और जो इंसान खुश है उसको दूसरे इंसान खुश रहने कहाँ दे रहे हैं? ये दुनिया गोल नहीं है, दुनिया तो खैर छोड़ो। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते, बहुत सारे लोग। नहीं, मैं तो हूँ। मोस्ट अनहैप्पी जॉब्स के बारे में मैं सोच रहा था, उसमें सबसे पहले नंबर पर आया कॉल सेंटर। एंड आई वॉज लाइक, हाँ वो लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग इतने उम्मीद से कॉल करते हैं कि हमें इंसेंटिव मिल जाएगा। फिर उसके बाद सामने वाला इंसान बोलता है, अरे मैडम जी पागल हो गए हो क्या आप लोग, क्यों कॉल कर रहे हो? और ये मेरे सामने देखी हुई बात है, क्यों ऐसे बात करनी कॉल सेंटर वालों से, उनका भी तो अपनी जॉब है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, कैशियर की जॉब। मुझे लगता है कैशियर की जॉब ना, जो एक बैंक कैशियर है वो डिफरेंट है, बट जो रेस्टोरेंट्स में या फिर मैं बोलूँ सुपरमार्केट में जो कैशियर होता है, उनकी जॉब बड़ी डिफिकल्ट टाइप की होती है। हाथ आया मुँह ना लगा, पैसा बहुत सारा आता है, लगता मुँह पे नहीं है। उसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स की जॉब भी मोस्ट अनहैप्पी जॉब्स में आती है। सोचो किलोमीटर पे किलोमीटर गिनते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे रूट पे वो ट्रैवल करते हैं और कितने ज़्यादा थक जाते होंगे। इसके बाद आती है बात डिलीवरी बॉयज़ की, जिनके साथ शोषण तो होता ही रहता है, क्योंकि उनको लिफ्ट में अलाउड नहीं है जाना। फरीदाबाद में भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो लिफ्ट में अलाउ नहीं करती है डिलीवरी बॉयज़ को। तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें जनाब, ना करें। और अभी फ़िलहाल एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि देखो एक और जॉब है, वो जॉब ऐसी है जो नोबल प्रोफेशन माना जाता है, जिसे कहते हैं नर्स। वो लोग भी अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि डॉक्टर उन्हें डांट देते हैं, पेशेंट के साथ में जो भी होते हैं पेशेंट के साथ वो भी डांट देते हैं। और फिर बात आती है टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स भले ही खुशी खुशी अपना काम करें, मगर वहाँ पर प्रिंसिपल भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तो साथ ही साथ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है टीचर्स से। तो ये थी कुछ मोस्ट अनहैप्पी जॉब्स ऑफ इंडिया। तो आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा ज़रूर। नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से

मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि क्या हुआ बारिश का, तू तो कह रहा था बारिश आ जाएगी थर्सडे की शाम से, हो सकता है कहीं छींटे पड़ रहे हो सकता है अभी मैं स्टूडियो के बाहर जाऊं तो शायद मुझे थोड़े बहुत छींटे देखने को मिल जाए। वैसे कोई उम्मीद है कि नहीं आपको लग रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि देखो मौसम विभाग का कहना था कि थर्सडे की शाम को हल्के फुल्के बादल आ जाएंगे, फिर फ्राइडे को दोपहर तक बारिश देखने को मिल जाएगी, फिर सैटरडे को भी बारिश देखने को मिल जाएगी। बट अब ये सारे चांसेस ख़त्म हो चुके हैं और सारे चांसेस शिफ्ट हो गए हैं अगले हफ्ते के लिए, तो रुकावट के लिए खेद है और आगे बारिश हो सकती है शायद। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव बात कर रहा है इस टाइम मौसम की। और मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि ह्यूमिडिटी 55 बनी पड़ी है, स्पीड हवा में चल नहीं रही है, और साथ ही साथ एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी भी ठीक है, देखो अभी मॉडरेट के आसपास है। और अभी सर्दियां आते आते हवा थोड़ी सी भारी हो जाती है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स थोड़े से और ऐड ऑन हो जाते हैं, तो फिर फॉग प्लस स्मोक मींस स्मॉग वाली स्थिति बन जाती है और पोल्यूशन बढ़ जाता है। अभी जितनी खुली हवा में सांस लेना है ले लो, मैं बस यही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए ना गाने चलाऊँ, बट गाने से पहले कल की बात कर लेते हैं, मतलब जो कल आने वाला कल है ना, आने वाला कल जाने वाला है, मगर आने वाला कल हो सकता है आप सभी के लिए बारिश लेकर आ जाए। और कल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल तो फ्राइडे है ब्रो, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे की उत्सुकता कितनी ज़्यादा होती है ना, तो फ्राइडे के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा हमें अपने पास, क्या रखना पड़ेगा, छाता, बारिश हो सकती है कल। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं HR 89.6, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: late.
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

आरजे गौरव आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है क्या हाल है। क्या हाल है पूछने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसे इंसान से पूछो, चापलूस इंसान से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा सर आप बताओ आप बढ़िया हो तो मैं भी ऑटोमेटिकली बढ़िया हूँ। हम बॉस ने बोला गुड मॉर्निंग, वो बोलता है सर आज की मॉर्निंग भी आपकी वजह से गुड है। बॉस की चापलूसी करने में वो एक भी कसर पूरी नहीं छोड़ता। ऑफिस में काम कम करता है वो, बॉस का मूड ज़्यादा ट्रैक करता है, क्योंकि क्या हाल है उससे पूछ लो तो बॉस का जोक भी उसको फनी हो या ना हो हमेशा उसकी अप्रेजल की गारंटीड ज़रूर होती है। मतलब बॉस के जोक की गारंटी नहीं है बट उसके अप्रेजल की गारंटी ज़रूर है। और हाँ, सर ने बस नया हेयर कट करवाया है और फिर उसके बाद वो पहुँच जाता है, सर पर्सनैलिटी अपग्रेड हो गया आपकी। ऐसी चीज़ें जाके बोलता है। अच्छा, बॉस के सामने उसकी वोकैबुलरी में भी ना नो शब्द नहीं होता, वो हर चीज़ में यस सर, जी सर, हो जाएगा सर, हर चीज़ में ऐसे ही बोलता है। और एक और चीज़, अगर किसी दिन बॉस लेट आए तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर आप लेट आए, वो बोलेगा सर आप लेट नहीं आए, ऑफिस जल्दी खुल गया था। और उसका काम ठीक हो या ना हो, बॉस की इंस्टाग्राम स्टोरी पे पहला रिएक्शन उसका ही होता है, क्योंकि बॉस ने बोला वीकेंड पे थोड़ा काम है, वो बोलता है सर वीकेंड भी तो आपका ही है, हम तो आपके ही हैं, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, कौन करेगा। और हाँ, एक और चीज़, वो बोलता है हमेशा कि सब बढ़िया है, सर आप खुश हो तो एम्प्लॉई खुश है, एम्प्लॉई खुश हो तो फिर क्या खुश है, अप्रेजल खुश होता है और कुछ खुश नहीं होता। तो ऐसे चापलूस एम्प्लॉई आपके भी ऑफिस में होंगे जो सर के आके पीछे पीछे घूमते रहते होंगे, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये सारी बातें। याद नहीं हुई तो हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, नंबर है जी 9654896896। क्या क्या बातें मैंने बोली वो मैं सब आपको लिख के भेज दूंगा। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना एड शीरन की आवाज़ में सफायर।

0: तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हंसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: क्या आपको पता है बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो दूसरी इंडस्ट्री से पिक किए जाते हैं, कभी साउथ इंडियन इंडस्ट्री से तो कभी बॉलीवुड से तो कभी हॉलीवुड से, बॉलीवुड नहीं बॉलीवुड पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से भी पिक करते हैं।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: आरजे गौरव आप सभी के साथ। 1990 में एक बहुत ही बढ़िया पंजाबी ट्रैक आया था अमरिक सिंह शेरा की आवाज में, याद होगा आप सभी को, तेन काड़ा चश्मा जचदा तोरे मुखड़े ते, और ये 1990s में आया था। बट उसके बाद फिल्म बार बार देखो मैं साल 2017 में ये ले लिया गया था काला चश्मा। इसके अलावा नवाबजादा एक मूवी आई थी, उसमें गुरु रंधावा का गाना हाई रेटेड गबरू, ये गाना भी ले लिया गया था। और 90s का एक और ट्रैक है जो बहुत ज़्यादा वायरल था अपने टाइम पे, हर शादी ब्याह में एक गाना ज़रूर बजता था, वो था ओ दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए, याद है ना ये गाना? हाँ, तो ये गाना लिया गया था फिर उसके बाद सोनू की रीडू की सीढ़ी वाली मूवी में, और हंसराज हंस की आवाज़ में ये गाना था, मगर अडेप्ट किसने किया, यो हनी सिंह और ओ तेनू सूट सूट करदा, ये भी तो गुरु रंधावा का था गाना, बट गुरु रंधावा की ही आवाज़ में हिंदी में इसे कन्वर्ट कर दिया गया था और हिंदी मीडियम मूवी में भी लिया गया था इसको। और इसके अलावा मुंडिया तो बच के रही ओ तेनू होनी होनी हुई मुटिया रे, गाना याद है ना आप लोगों को, ये गाना भी रिक्रिएट किया गया था हिंदी में बागी 2 मूवी के लिए। तो देखो ऐसे ही ना रोज़ रोज़ आके आप लोगों का ज्ञान बढ़ाता जाता हूँ। आई नो यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी, मतलब ऐसी चीज़ें भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमारे पास भी है ना म्यूज़िक डिकोड करने की, तो वही म्यूज़िक को डिकोड किया है आज और अभी कल भी करता रहूँगा। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ गुरु रंधावा की आवाज़ में, मिक्स मैशअप उन्हीं के दो गाने अजूल और सिरा।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं, मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर। भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है, दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में ना इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके बाद ये सवाल नहीं रहता कि हम उन्हें भूल पाएंगे कि नहीं। सवाल ये होता है कि उनके बिना जीना सीखने में कितना वक्त लगेगा। और शायद प्यार की सबसे मुश्किल घड़ी यही होती है जब इंसान चला जाता है लेकिन उसके साथ बिताई हुई जिंदगी जाने से मना कर देती है ना। वेलकम टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके रात के इस हिस्से में जहाँ हम मिलते हैं इश्क शायराना में, जहाँ शायरी किसी शायर के अल्फाजों में नहीं होती बल्कि उन लोगों की आवाजों में होती है जो अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो आज की रात का एक शेर है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी किसी के बिना जीने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसके बिना एक शाम बिताना मुश्किल हो जाता है। हम फ्यूचर के बड़े बड़े फैसले लेते हैं लेकिन प्रेजेंट का एक छोटा सा खालीपन हमसे सहा नहीं जाता। शायद इसीलिए मोहब्बत मुश्किल नहीं होती, मोहब्बत के बाद बची हुई जिंदगी मुश्किल होती है। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत। तो आज की रात बात करेंगे उसी खाली जगह की जो किसी के जाने के बाद सिर्फ दिल में नहीं पूरी जिंदगी में बन जाती है। स्टे ट्यून्ड, अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और आज का शेर कहता है, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी आसानी से कह देते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ कम नहीं होते, वो बस हमारी आदतों में शामिल हो जाते हैं। उनके बिना जीना पॉसिबल तो होता है लेकिन नेचुरल नहीं लगता। और यही फर्क है किसी की कमी और किसी की जगह में। कमी पूरी हो सकती है लेकिन जगह नहीं। कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारी जिंदगी में मौजूद रहते हैं, बस उस पल में जहां हम सोचते हैं अगर वो होता तो शायद ऐसा होता। और शायद यही प्यार है, किसी को अपने पास रखने की जिद नहीं बल्कि उनके बिना भी उसकी मौजूदगी का महसूस होना। स्टे विद मी, अब ये गाना और उसके बाद बात उस खतरे की, जैसे संभालना सबसे मुश्किल होता है। मैं आपके साथ गीत हूँ।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और कहते हैं ना कि एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और शायद यही लाइन सबसे ज्यादा सच है, क्योंकि जिंदगी का पूरा समंदर हम पार कर लेते हैं लेकिन किसी एक इंसान की याद का एक छोटा सा कतरा हमें डुबो देता है। हम मुश्किल वक्त से निकल आते हैं, लोगों के बदल जाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी बदल लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक नाम, एक एहसास, और हम वहीं लौट जाते हैं जहाँ से निकलने में हमें साल लग गए थे। शायद इंसान मजबूत होता है लेकिन दिल हमेशा नहीं, और शायद यही हमारी सबसे खूबसूरत कमजोरी है कि हम पूरी दुनिया संभाल सकते हैं लेकिन जिस इंसान को दिल ने अपना मान लिया हो उसकी कमी का एक खतरा भी नहीं। और यही तो है शायरी, लेकिन उनके पीछे एक पूरी उम्र खड़ी होती है। गाना सुनते हैं क्योंकि कुछ एहसासों को समझाने के लिए शब्द नहीं बल्कि म्यूजिक चाहिए, क्यों है ना।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: तो आज की रात जाते जाते बस इतना कहना, हम सबकी जिंदगी में शायद कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके बिना पूरी उम्र बिताई जा सकती है, लेकिन कुछ लम्हे नहीं, और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई है, प्यार हमेशा साथ मिल जाने का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्त्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियाँ यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियाँ बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: plan today.
1: Please tomorrow.
2: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बज़ बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

0: तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस

साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाइज हो सकते हैं लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहां ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहां हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: 24 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी सांस हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे